ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 एफएम पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, घर घर की आवाज, रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 16, शीर्षक है वफा। एडिट किया भारत सपोरी ने। स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता RJ किरणी।
3: वफा सिर्फ एक वादा नहीं, एक जज्बा है जिसे निभाने वाले कम होते हैं और आजमाने वाले हजार। कभी ये मोहब्बत का रूप लेती है, कभी जुदाई का दुख। आज पहलू और गीत में चलिए महसूस करते हैं वफा के हर पहलू को। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता 90.0 FM पर। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मोहब्बत सिर्फ कहना नहीं, मोहब्बत तो निभाने का नाम है। वो एक वादा जो हर मोड़ पर साथ निभाए, कोई चाहे मिले या ना मिले, पर वफा अमर रह जाती है।

कुछ मोहब्बतें सिर्फ जुदाई में जीती हैं, कभी एक आंसू बन के, कभी एक कहानी बन के, पर वफा करने वाले कभी शिकवा नहीं करते, बस एक मुस्कुराहट के साथ मोहब्बत को याद करते हैं।

कोई छोड़कर भी चला जाए तो भी वफा करने वाले वफा निभाते हैं। उनके लिए मोहब्बत सिर्फ हासिल करना नहीं, किसी की यादों में जीना भी है।

मोहब्बत सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं, ये एक रोशनी है जो दिल से दिल तक जाती है। जिसे सच में प्यार होता है वो हर मोड़ पर साथ निभाता है। जो दिल से वफा करते हैं वो फासलों से नहीं डरते। एक सच्चा आशिक सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, वो वफा का हकदार भी बनता है, क्योंकि उसके लिए प्यार सिर्फ हासिल करना नहीं बल्कि

कुछ मोहब्बतें मिलने के लिए नहीं होती, कुछ प्रेम कहानियां जुदाई में लिखी जाती हैं। दूर रहकर भी एक दूसरे की यादों में जीना भी तो वफा है। कई बार दूरियां सिर्फ शारीरिक होती हैं, दिल तो एक सा धड़कते हैं। सच्चा प्यार चाहे जितना भी दूर चला जाए, वफा का एहसास जिंदा रहता है, क्योंकि मोहब्बत एक बार होती है और सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती।

वफा सिर्फ उस वक्त तक नहीं होती जब तक कोई साथ हो। कई बार बेवफा होने वाले भी यादों में वफा छोड़ जाते हैं। जो सच्चा मोहब्बत करता है वो धोखा मिलने के बाद भी वफा करता है, क्योंकि उसके लिए प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक इबादत होती है। वो दुख से गुजर सकता है मगर अपनी मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ता। बस एक ही तमन्ना रहती है कि काश वफा का सिला भी वफा होता।

वफा सिर्फ आशिकों का सिलसिला नहीं, दोस्ती का फर्ज भी होता है। दोस्त वो जो खुद भले ही टूट जाए मगर दोस्ती का वादा न तोड़े, जो अपनी खुशी से पहले दोस्तों का सोचता है वही सच्चा दोस्त होता है। दोस्ती एक मिसाल है जिसमें सिर्फ वफा का दामन पकड़ना पड़ता है। जिसने एक सच्चा दोस्त पा लिया उसने दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता जीत लिया, वो रिश्ता जो न खून का मोहताज है ना किस्मत का।

वफा सिर्फ एक वादा नहीं, एक कुर्बानी भी है। कभी किसी की खुशी के लिए खुद को भूल जाना, कभी मोहब्बत में खुद को मिटा देना, ये सिर्फ वही कर सकता है जिसे अपने प्यार से सच्ची वफा हो। मोहब्बत चाहे कमजोर कर दे, मगर वफा इंसान को मजबूत बना देती है, क्योंकि जो दिल से चाहता है वो अपने प्यार के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहता है।

वफा सिर्फ साथ निभाने का नाम नहीं, कभी कभी इंतजार भी एक तरह की वफा होती है। किसी की एक आहट पर जीना, किसी की एक मुस्कुराहट के लिए साल गुजार देना, कभी वक्त गुजर जाता है मगर इंतजार खत्म नहीं होता। वो जो सच्ची मोहब्बत करते हैं वो उम्मीद नहीं छोड़ते, क्योंकि इंतजार सिर्फ वक्त का नहीं होता, किसी के लौट आने का भी होता है।

ये था पहलू और गीत वफा के नाम। फिर मिलेंगे एक नए पहलू के साथ और एक नए गीत के साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त किरनी, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 16, शीर्षक था वफा। एडिट रिकॉर्ड किया भारत सपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान व निया जैन का, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सी कमाया आई, कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लेकर आए हैं आज के कृषि समाचार और इस कार्यक्रम में मेरा साथ देंगी मेरी साथी।
2: मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नैना। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: कपास की फसल में हो सकता है चित्तीदार और गुलाबी सुंडी का प्रकोप, थ्रिप्स चूड़ा रोग से भी बचाना जरूरी। कपास की फसल करीब 2 महीने की हो चुकी है, ऐसे में खेत का प्रतिदिन निरीक्षण करें। जून से देसी कपास में वित्तीदार सुंडी का प्रकोप होता है। इसमें बढ़ती शाखा का मुरझा जाना, बोकी या डोडी का गिरना या पंखड़ी नुमा बोकी का बनना इत्यादि लक्षण शामिल हैं। इसके नियंत्रण के लिए 100 से 125 मिलीलीटर फेनवेल्ड्रेट 20 EC प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर B.R. काम्बोज ने बताया कि नरमा की फसल 40 से 45 दिनों की होने पर 2 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से गुलाबी सुंडी की निगरानी के लिए लगाएं। 3 रातों में यदि 12 से 15 गुलाबी सुंडी के वजह से ट्रैप होते हैं तो स्प्रे की आवश्यकता है। कपास की फसल में फूल बनने की शुरुआत होने पर गुलाबी सुंडी की निगरानी अवश्य करें। इसके लिए प्रति सप्ताह खेत के विभिन्न स्थानों में कम से कम 100 फूलों का निरीक्षण करें। गुलाबी सुंडी से प्रभावित फूल फिक्री नुमा अथवा गुलाब नुमा दिखाई देते हैं। ऐसे फूलों को खोलकर देखने पर उनके अंदर गुलाबी सुंडी पाई जाती है। खेत में या आसपास रखी गई पिछले साल की नरमा की लकड़ियों के टिंडे एवं पत्तों को झटका कर अलग कर दें एवं इकट्ठा हुए कचरे को नष्ट कर दें। इन लकड़ियों के टिंडों में गुलाबी सुंडी निवास करती है। जून में कपास की फसल में थ्रिप्स चूड़ा का प्रकोप शुरू हो जाता है। 60 दिनों से कम अवधि की फसल में थ्रिप्स संख्या यदि 30 थ्रिप्स प्रति 3 पत्ता मिले तो नीम आधारित कीटनाशक का प्रयोग करें। हर सप्ताह खेत में कम से कम 100 फूलों का निरीक्षण करें किसान। नीम आधारित कीटनाशक छिड़कें। अनुसंधान निदेशक डॉक्टर राजवीर गर्ग ने बताया कि कपास की शुरुआती अवस्था में ज्यादा जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग ना करें। ऐसा करने से मित्र कीटों की संख्या भी कम हो जाती है। नरमा की फसल में 10 से 20% पौधों में बौकी बनने की शुरुआत होने पर गुलाबी सुंडी का प्रकोप रोकने के लिए 1.0 लीटर नीम आधारित कीटनाशक निम्बिसीडन या अचूक को 100 से 125 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ स्प्रे करें। कपास की फसल 60 दिनों की होने के बाद तथा गुलाबी सुंडी का प्रकोप फूलों में 5 से 10% होने पर छिड़काव इमामिक 3-बेंजोएट 5 ACG की 100 ग्राम मात्रा को 100 से 125 लीटर पानी की दर से प्रति एकड़ छिड़काव करें। अच्छी बारिश के बाद NPK का प्रयोग करें। कपास अनुभाग के अध्यक्ष डॉक्टर करमल सिंह मलिक ने बताया कि अच्छी बरसात के बाद ही यूरिया का 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। अगर बिजाई के समय कुछ नहीं डाला है तो 1 बैग यूरिया की जगह DAP डालें। अब अच्छी बरसात के बाद NPK का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो, जहां ड्रिप द्वारा सिंचाई की सुविधा है वहां पर घुलनशील उर्वरक 3 पैकेट प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि बारिश हो जाए या सिंचाई करनी पड़े तो प्रति एकड़ 1 बैग यूरिया का प्रयोग करें। साथ ही निराई गुड़ाई अवश्य करें ताकि खरपतवारों से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। फव्वारा एवं टपका विधि से सिंचाई प्रतिदिन ना करें। पत्ती मरोड़ रोग से ग्रस्त पौधे उखाड़ दें। जड़ गलन रोग से प्रभावित पौधों के आसपास के स्वस्थ पौधों में कार्बिडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर 400 से 500 मिलीलीटर जड़ों में डालें। बीमारी से सूखे हुए पौधों को उखाड़ दें, जिससे बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। फसल की लगातार निगरानी रखनी चाहिए व पत्ती मरोड़ रोग से ग्रस्त पौधों को उखाड़कर दबा देना चाहिए।
2: दिल्ली पंजाब तक पहुंचाया 5 रंगों के तरबूज व चेरी टमाटर का स्वाद। पानीपत के राम प्रताप ने पुश्तैनी खेती को ऑर्गेनिक खेती का रूप दिया। पानीपत के सिवाह के रहने वाले प्रगतिशील किसान राम प्रताप शर्मा ने कृषि की दुनिया में नए आयाम स्थापित किए हैं। खेती को ऑर्गेनिक ढंग से किया है। अब पानीपत के 5 रंगों के तरबूज व चेरी टमाटर का स्वाद दिल्ली पंजाब व नोएडा में ऑनलाइन ऑर्डर पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में पहली बार ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की, लेकिन पर्यावरण अनुकूल नहीं होने के कारण वह खेती का विस्तार नहीं कर सके। वह राष्ट्रपति सहित कई अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं। राम प्रताप शर्मा ने बताया कि उनके पिता राधेश्याम शर्मा ने पिता और दादा की खेती संभाली थी। उन्होंने भी 17 साल की उम्र में 1989 में खेती को संभाल लिया। उस वक्त रेलवे लाइन के किनारे 14 एकड़ जमीन पर गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि की खेती की जा रही थी। उन्होंने 1982 में टमाटर, आलू, खीरा, तोरई, करेला, लौकी, कद्दू, प्याज, पेठा आदि सब्जियों की खेती को शुरू कर दिया। उन्होंने यूरिया आदि केमिकल का प्रयोग करना पूरी तरह से बंद कर दिया और सिर्फ ऑर्गेनिक खेती करना शुरू कर दिया, जिसे लोग काफी पसंद करते हैं। 2021 में थाईलैंड के बीच से ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की। राम प्रताप ने बताया कि 7 साल पहले उन्होंने थाईलैंड, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया के हाइब्रिड बीजों से खेती का स्वरूप बदलना शुरू कर दिया था। 2019 में उन्होंने ताइवान के बीजों से चेरी टमाटर की खेती करना शुरू किया था, जो अब काफी बढ़ गई है। वह हर सप्ताह वह 1 क्विंटल चेरी टमाटर दिल्ली व 1 क्विंटल नोएडा व पंजाब के लुधियाना में भेज रहे हैं। 2021 में थाईलैंड के बीज से ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की। उसके बाद सन 2022 से अंदर से लाल के अलावा पीले, संतरी और नीले रंग के तरबूज की खेती शुरू की। इसके साथ ही वह अंदर व बाहर से पीले रंग का तरबूज भी उगा रहे हैं। इस कारण उन्होंने 3 एकड़ और खेती के लिए भूमि खरीद ली। प्रति हफ्ते वह 4 से 5 क्विंटल तरबूज उगा रहे हैं। इजराइल के डेलीगेशन ने 2 दिन की रिसर्च। 2 साल पहले इजराइल के डेलीगेशन ने 2 दिन तक उनकी खेती पर रिसर्च की थी। इस टीम ने सुबह से रात तक की दिनचर्या, बीजों, खेती करने के तरीके, तकनीक, पद्धति आदि बिंदुओं पर काफी बारीकी से रिसर्च की थी। मानसून की पहली बारिश के बाद 15 जुलाई तक कर लें बाजरे की बिजाई। बिजाई के 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई जरूर करें। बारिश के बाद से ही खेतों में बिजाई तेज हो गई है। कृषि विभाग ने जून के आखिरी सप्ताह से जुलाई के मध्य तक मानसून की पहली अच्छी बारिश के तुरंत बाद बाजरा की बिजाई की सलाह दी है। बिजाई से पहले बीज को फफूंद नाशक जैसे कार्बन डाइजम 2 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित जरूर कर लें। बिजाई सीड ड्रिल या पोरा विधि से करें। पौधों को बराबर धूप और हवा मिल सके, इसके लिए बिजाई के 10 से 15 दिन बाद अगर पौधे बहुत पास पास उग गए हैं तो कमजोर पौधों को उखाड़ कर उनके बीज की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर कर लें। इससे बचे हुए पौधों को फैलने की पूरी तरह जगह मिलती है। बिजाई के 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करें। यदि जरूरत हो तो बिजाई के तुरंत 38 घंटे भीतर इट्राजिन नामक दवा का छिड़काव भी किया जा सकता है। यूं तो बाजरा मुख्य रूप से वर्षा आधारित बारिश के पानी पर निर्भर फसल है और इसमें बहुत कम पानी की जरूरत होती है, लेकिन अगर बारिश ना हो तो फसल की 3 संवेदनशील अवस्थाओं में पानी देना बहुत जरूरी है। 3 सिंचाई करना आवश्यक। कृषि उपमंडल अधिकारी डॉक्टर अजय यादव ने बताया कि अगर जुलाई महीने में भी मानसून का साथ मिला और सामान्य बारिश हुई तो बाजरे का रकबा तय लक्ष्य को पार कर सकता है। इस समय पौधों में कल्ले फूट रहे होते हैं। दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन में करें। तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन में करें। इस दौरान बालियों में दाना भर रहा होता है।
1: यह थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास भी कोई कृषि संबंधित जानकारी है, आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर है 7056413010। अब हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। स्वस्थ रहिए। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।
2: मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं पोर्टल में नुकसान मानता हूँ, मौसम परिवर्तन का यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों कुछ ना कुछ भरपाई होगी। जी मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो विद स्टार, हम सफर जिंदगी का।

आप कभी किसी बात पर इतना सोचते हैं कि दिमाग फटने लगे, अगर मैं ये बोलूं उसने ऐसा क्यों कहा। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता बल्कि हर दूसरे इंसान के साथ होता है। आज हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग से कैसे बचा जाए। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी और आप सुन रहे हैं रेडियो पॉडकास्ट विद किरणी। ओवरथिंकिंग, सोचने की हद। ओवरथिंकिंग क्या है? जब हम किसी बात या स्थिति पर आवश्यकता से अधिक सोचते हैं और ये सोचना हमारे डिसीजन मेकिंग या डेली लाइफ को प्रभावित करता है तो इसे ओवरथिंकिंग कहते हैं। ओवरथिंकिंग के क्या क्या कारण है? भविष्य की चिंता, आने वाले समय को लेकर चिंतित रहना, अतीत का पछतावा, बीते हुए समय की गलतियों पर बार बार सोचना, हर छोटी बात पर ज्यादा सोचना, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाना। ओवरथिंकिंग के साइंस, हर छोटी बात पर ज्यादा सोचना, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाना, नेगेटिव सिनेरियो बनाना, रात को नींद ना आना या अननेसेसरी स्ट्रेस लेना। ओवरथिंकिंग क्यों होता है? पास्ट एक्सपीरियंसेस, बुरे तजुर्बे या गलतियों पर अटक जाना। परफेक्शनिज्म, हर चीज परफेक्ट होने की चिंता। फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे ये सोचना। ओवरथिंकिंग से कैसे बचे? 5 सेकंड रूल, किसी डिसीजन पर ओवरथिंक हो रहा है तो 5 सेकंड के अंदर एक्शन लो। जर्नलिंग, अपनी सोच लिखने की आदत डालिए। माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग करें। पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन, म्यूजिक, एक्सरसाइज या कोई हॉबी में बिजी रहे। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। रोजाना ध्यान लगने से मन शांत होता है। ओवरथिंकिंग के नुकसान, इससे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और नींद की समस्या हो सकती है। कंक्लूजन, सोचना जरूरी है लेकिन ओवरथिंकिंग नहीं। अपनी सोच को कंट्रोल करना सीखिए वरना सोच आपको कंट्रोल कर लेगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। पॉडकास्ट विद किरणी के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार।

हमारा यह सफर यूं ही चलता रहा और गुजरती गई सदियां पनाह गाहों में पनाह लेने की ख्वाहिश सीने में ही दब गई। तुमसे मिलना तुमसे बिछड़ना एक आदत सी बन गई। बीते लम्हे रुसवाई का रास्ता दे गए और पथरीली रेतीली राहें मंजिल का पता बता।

छूट गए साथी, सिमट गई जिंदगी, जज्बा मोहब्बत का टूट गया, बिखर गया, हर पल अपना साया भी पराया होने लगा, जो मिले वो अचानक रूठ गए, यहां के साहिल दरियाओं से बिछड़ गए और इन दरियाओं के पत्थर पानी के लिए तरस

0: बाती ही और है तुम्हारी फरामोशी। रंग बिखर पड़े हैं पर रक्स करती हैं फिजाएं। शायद सोचा होगा कि हवाओं के रुख में बदलाव होगा, पर ये जरूरी तो नहीं कि मौसम बदलते ही तुम लौट आओगे। इन घने बादलों को चीर कर। और यह भी तो जरूरी नहीं कि दिल की बातें हों, बातों बातों में तुम याद आओगे।
1: तुझको पहचान जाते खुदा।

एक प्यारा सा गांव है, पर अजनबी रास्ते हैं। किससे मुखातिब हो जाए, हर कोई एक दूसरे से अनजान है। इन फासलों के दरमियां अपने आप को भी पहचानना मुश्किल सा लगता है, लेकिन इसके बावजूद यहां खुशबू है अपनेपन की, यहां मिठास है मोहब्बतों की, और दूर एक कोने में यहां दर्द भी बिकता है।

परी आसमां से उतरी थी, मुझे छूकर गुजर गई। अपने दुपट्टे से मेरी नींदों को चुरा ले गई। मेरे कानों में चुपके से कुछ कह गई। ये कुछ लम्हे तुम्हारे नाम हो गए, इनको संजो कर संभाल कर रखिएगा। अपनी दुआओं में मुझे शामिल कर मुझ पे एहसान जताया, नवाजिश करम, शुक्रिया।

आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं मिले जुले गीतों के इस प्रोग्राम के साथ। हर अमावस को तुम्हारा इंतजार, मेरी हर पूनम रात को अमावस कर गया। मैं हूं रमेश।

कच्ची मिट्टी के रिश्ते मुश्किलों की आंच में तपकर पक जाते हैं, जब सदियों तक निभ जाते हैं।

से छूकर लौट जाते हो सागर में, और मेरे मन की भीगी रेत पर खेलते यादों के बच्चे उम्मीदों के घरौंदे बनाते हैं, तोड़ते हैं। लेकिन अब इनका रोज रोज बनना टूटना बच्चों का खेल नहीं रहा।

रिश्ते अगर रास्ते हो जाते, खत्म बीच के फासले हो जाते, मैं और एक तू मिलकर हम मोहब्बत के काफिले हो जाते हैं।

दोस्तों, मिले जुले गीतों का ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाजत, जरूर बताइएगा आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। आदाब, नमस्ते।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता हमसफर जिंदगी का। कला एक प्रकार का कौशल है। कलाकार का कौशल उससे कहा जाता है जिसमें कलाकार क्रिया, शिल्प एवं तकनीक के अतिरिक्त कृति को आकर्षित बनाने के लिए अपने मानसिक चिंतन प्रक्रिया के द्वारा नवीनता लाने के लिए अनेक युक्तियां खोजता है। जो ये खोज करता होता है वो ही एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर एवं एक अच्छा इंसान होता है। ये सारे शब्द आज के आमंत्रित मेहमान की शान में पड़े गए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिचर्चा, जहां हम बात करते हैं कला की, संस्कृति की और रंगमंच की। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज के मेहमान इन तीनों विधाओं में माहिर हैं और गौरव इस बात का है कि अनिल कुमार यादव जी मेरे शिष्य भी हैं। करते हैं स्वागत श्री अनिल यादव जी का, जो एक राइटर है, एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है।
1: पहले तो मैं इस FM का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और आप मेरे गुरु जी हैं और मुझे अपने पे फक्र फील हो रहा है कि मैं अपने गुरु के सामने मैं इस परिचर्चा में शामिल हुआ हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। ये बातों का सिलसिला इस कार्यक्रम के दौरान हमारा चलता रहेगा। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं को अपने अंदाज में दें।
1: पहले तो मैं सुनने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मुझे सुन रहे हैं। अपने बारे में मैं ज़्यादा नहीं, छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो जन्म है अम्बाला छावनी में ही हुआ है, लेकिन जो मेरा लालन पोषण अगर कहें तो यूपी, उत्तर प्रदेश फैज़ाबाद में जो अयोध्या के पास है वहाँ पे हुआ। मेरा जो आरंभिक शिक्षा है 5वीं तक मैंने वहीं से ग्रहण की। उसके बाद मैं अम्बाला आया, फिर यहाँ से मेरे जितने भी क्वालिफिकेशन है वो अम्बाला गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ हुई। उसके बाद आज मैं PhD स्कॉलर हूँ कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी का, वहाँ से मैं फिल्म में PhD कर रहा हूँ। तो ये मेरी छोटी सी एक है।
0: तो जो आप PhD कर रहे हैं तो ये फिल्म मेकिंग और फिल्म प्रोडक्शन के बारे में ही आप PhD कर रहे हैं?
1: ये सर मैंने, क्योंकि क्या है PhD का एक रूल है कि आपको पहले देखना होता है कि किस चीज़ पे रिसर्च हो रखी है। तो मैंने बहुत सारे 100-150 रिसर्च मैंने पढ़ी, बुक्स पढ़ी, तो मेरे दिमाग में ये आया कि जिस पे रिसर्च नहीं हुई है उस पे करना चाहिए। एक है सिमियोटिक्स या मिजन सीन हम बोलते हैं, सिमियोटिक्स का पार्ट है जिसके अंदर साइंस सिंबल के थ्रू हम फिल्म को प्रेजेंट करते हैं।
0: ठीक।
1: तो इस पे अभी तक इंडिया के अंदर PhD नहीं हुई है, अगर हुई है तो एक शोध के रूप में हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो विषय है वो सिमियोटिक्स रखूँ
0: जी।
1: तो सिमियोटिक्स में कई सिद्धांत हैं, अलग अलग लोगों ने दिया है, तो उनको लेकर मैं करूँगा। जैसे सर धुआं उठता है तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है, आग लगी
0: जी,
1: है
0: जी,
1: तभी वो धुआं उठा है। तो इस तरह सिमियोटिक्स मैं यूज करूंगा PhD में।
0: हमें इस बात की भी खुशी है कि अम्बाला में हमें एक PhD यानी एक डॉक्टर जिसको कहते हैं, एक उपलब्धि हासिल होती है और फिल्म मेकिंग में या फिल्म के साथ जुड़े हुए इन विषयों के साथ हमें एक एक्सपर्ट मिलेंगे, तो अम्बाला के लिए ये एक खुशी की बात है, ताकि आने वाले दिनों में बहुत सारे बच्चे आपसे सीखेंगे। आपने अभी कहा कि आपकी आरंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद अयोध्या में हुई है, तो ये जानना चाहेंगे कि क्या कला का सृजन उसी समय से हुआ था?
1: जी सर, जब मैं छोटा था तभी से मेरा एक्टिंग का, डांस का बड़ा शौक रहा है। और वो शौक कैसे चढ़ा, स्कूल में फंक्शंस होते थे तो जो डांस का और एक्टिंग का होता था मैं उसमें सबसे आगे होता था। तो उसका एक छोटा सा किस्सा आपको बताऊंगा कि क्या रहा। टीचर क्या कहते हैं कि ये बुक है, आप लो इसमें से अपने डायलॉग ढूंढ लो। हम हैंड खड़े करते थे, ये रोल मैं करूंगा, तो मैंने ले लिया। तो हम क्या करते हैं, सारे बच्चे कॉपी ले आते थे उस टाइम, 5 रुपए की मिलती थी, पेन मैं लेकर आ गया। मैं कहा होंगे 10-12 डायलॉग्स, तो मैं कह रहा हूँ मैं पहले ढूंढूंगा। ढूंढते ढूंढते एक पेज पे सिर्फ एक वर्ड का डायलॉग मिला, वो था आक्रमण,
0: बस इतना ही बोलना था।
1: यस, अभी और सुनो सर, फाइनल एंड प्रैक्टिस, मैं अलग अलग आवाज में आक्रमण आक्रमण अलग अलग आवाज निकाल रहा था। जिस दिन फाइनल हुआ उस दिन सामने अर्जुन था, तो मैं सेनापति था, तो मुझे बोलना था। अर्जुन ने पहले तीर लगा दी, चला दी, मुझे डायलॉग नहीं बोलने दिया।
0: अच्छा, जो आक्रमण के बाद तीर चलना था वो पहले ही चल गया, आपका डायलॉग उसमें दब गया।
1: दब गया। अब मैं कहूँ मरू कि मैं बोलूं, तो मैंने कहा मरना ही सही रहेगा क्योंकि तीर लग चुकी है। तो ऐसा हुआ था, तो मैं बाद में उस लड़के को बोला, मैं कहा यार एक डायलॉग मैंने 2 महीने रटे, अच्छे आवाज निकाल निकाल के करी, और तूने तीर पहले मार दिया यार। तो कह रहा चल अगली बार तो बोल दियो।
0: चलिए, मतलब ये एक आपकी शुरुआत यहाँ से कला के प्रति रही है, तो उसके बाद क्या ऐसा कभी हुआ कि नहीं, उसके बाद ऐसा नहीं होने दिया?
1: नहीं, उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर मैंने कहा एक डायलॉग नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कुछ ज्यादा। फिर एक्साइटमेंट में करा, तो उसमें मैं हवलदार बनना था, तो हवलदार में थे डायलॉग्स थोड़े बहुत। अब क्या था उसमें, स्टार्टिंग में ढोल लेकर अनाउंसमेंट करना था कि सुनो सुनो आज ये होने वाला है, तो अब ढोल नहीं मिली। टीचर, मैंने कहा सर ढोल नहीं है, फाइनल चल रहा है सर स्टेज पे। कह रहे तू अपने पीछे ना हाथ मार मार के कह सुनो सुनो। मैंने कहा मन में कुछ था, अब बताता हूँ मैं शुरू हो गया सुनो सुनो और पीट रहा हूँ मैं पीछे से, और बड़ा मजा आता था।
0: अनिल जी, आपने कहा कि जो आपका पहला डायलॉग था और वो आप उस समय नहीं बोल पाए क्योंकि तीर पहले ही चल गया, तो मैं चाहता हूँ कि वो डायलॉग आज आप हमारे श्रोताओं के लिए बोलें, जिन आवाजों में आपने उसको तैयार किया था, आप एक बार उन आवाजों को दोहराएं ताकि एक दिल की तसल्ली हो जाए कि डायलॉग तो हमने बोल दिया।
1: हाँ जी सर, वो था आक्रमण। तो मैंने अलग अलग आवाज, मैंने कहा आक्रमण आक्रमण आक्रमण, तो इस तरह मैंने
0: इस तरीके की आपने तैयारी करी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कहा कि आप यूपी के बाद जो आपकी बाकी की शिक्षा है वो अंबाला में हुई, तो अंबाला आगमन कैसे हुआ और अभिनेता बनने का ख्याल कब से आया?
1: यस सर, मैं 5th वहाँ कर चुका था, तो मैं यहाँ घूमने आया था। फादर मेरे यहाँ जॉब करते थे, तो मम्मा के साथ आ गया मैं, तो 1 महीने की छुट्टी थी, तो यहाँ पे रुका, तो यहाँ जो एनवायरमेंट था, बच्चे थे, उनके साथ घुल मिल गया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहीं से पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। तो मैं एक स्कूल में गया, तो कह रहे 1 क्लास पीछे लेंगे। मैं इंटेलिजेंट था अपने टाइम में, मैंने कहा पीछे तो मैं जाऊँगा नहीं। फिर किसी ने अप्रोच करे, तो गवर्नमेंट स्कूल में 6th में मेरा एडमिशन हो गया। फिर उसके बाद ये अपना कबाड़ी बाजार में है, जो 12 बजे क्लास लगती थी, तो आराम से 12 बजे पहुँच जाते थे और 5-6 बजे छुट्टी होती थी। तो वहाँ पे भी जैसे डांस का प्रोग्राम होता था 12 बजे, तो वैसे ही, और सारे जो मेरे फ्रेंड थे यूपी के थे, 4-5 फ्रेंड थे, तो और अच्छा लगा। तो इस तरह वहाँ से हमें एक अच्छा सा वो मिल गया, माहौल मिल गया। तो फिर मैंने कहा गांव क्या करने जाना है। फिर थोड़ा सा ये भी रहा कि शहर जो है वो अपने आप में आपको अच्छा,
0: कुछ नई चीज़ें लेके आता है।
1: फिर उसके बाद स्कूल करने के बाद फिर मैं कॉलेज में एंट्री मेरी हुई, तो आपको पता है कॉलेज में जाना मतलब कि आप एकदम वहाँ कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है, नए नए कपड़े सेंट सुन लगा के, वो एक आता था बहुत महकता था, वो मैंने छिड़का घड़ी पे भी पड़ गया था। मेरे को इतनी ज्यादा स्मेल आने लगी थी, मैं घड़ी फेंक दिया था मैंने। जब मैं वहाँ पहुंचा तो टीचर पूछते हैं कि आपका मतलब आप क्या बनना चाहते हो, तो सारे बच्चे जी हम डॉक्टर डॉक्टर मतलब डॉक्टरेट करना चाहते हैं, हम
0: इंजीनियर बनना चाहते हैं।
1: इंजीनियर तो हमारे मास कम्युनिकेशन में नहीं होता है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो वहाँ पे कोई कह रहा हम रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, हम एंकर बनना चाहते हैं, टीवी में जाना चाहते हैं, न्यूज़पेपर में जाना चाहते हैं, इस तरह का। मेरी बारी आई, कह रहे हाँ नीलम तुम क्या बनोगे। मैं कहा मैं एक्टर बनूंगा। तो वहाँ पे 35-40 बच्चे थे, वो हंसने लगे मुझे देख के।
0: ठीक,
1: तो मैंने सबको देखा, तो सर ने कहा चुप हो जाओ ऐसे नहीं हंसते। तो मैंने कहा चलो मैं बैठ गया। फिर उसके बाद वहाँ प्रैक्टिस हुई, सब बोलते थे, तो मेरे को टीचर ने, मेरे रविशंकर नाम है गुरुजी का, उन्होंने मुझे कहा कि तू रेडियो में ट्राई करो, तुम्हारी आवाज़ में थोड़ा सा है दम। मैंने कहा सर मुझे एक्टर बनना है, ना मुझे टीवी में जाना है ना रेडियो में जाना है, मुझे हीरो बनना है। इसलिए तो मैंने किसी से पूछा था, कह रहे ये सब्जेक्ट पढ़, ये फिल्म से रिलेटेड है, यहाँ डांस वांस भी होता है।
0: ठीक है,
1: तो वहाँ से फिर सर ये जर्नी स्टार्ट हुई। हमारे यहाँ प्रेस डे मनाते हैं, तो वहाँ पे खुद लिखी, हमने स्क्रिप्ट लिखी, वो था उसका फर्स्ट हमने करा था, औरत की दुश्मन औरत। तो उसके हमने स्क्रिप्ट लिखी, उस पर एक्टिंग भी करी, मैं फादर का रोल मैंने करा। तो मैं जिम जाता था ना, तो टीचर कह रहे तू कहाँ से लगता है फादर, कह रहे ऐसे कौन फादर चलता है एकदम चौड़ा होके। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। तो लास्ट में जब मैंने बाल वाल कटिंग कराई, गमछा गमछा डाला, थोड़ा झुक के खुले खुले ड्रेस से डाला, तो सर ने अच्छा वो करा था, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, डांस करना शुरू करा। और उस टाइम में सर नाइट ड्यूटी भी करता था।
0: अच्छा,
1: नाइट ड्यूटी करता था तो यहाँ भी जाना होता है। और सुबह मैं आर्मी स्कूल में एज अ पार्ट टाइम मैं था डांस टीचर, कोरियोग्राफी करता था मैं, वहाँ भी जाना होता था। इसी दौरान जब एक बार घूमते घूमते पता लगा आपके पास, जब हम आए कि वर्कशॉप लग रही है।
0: इससे पहले मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आपने बात कही उसी में से एक सवाल मेरे मन में आया, वो ये है कि संघर्ष, जब हम जिंदगी में आगे की ओर बढ़ते हैं, आप यंग थे, आप कॉलेज गए, आप यंग अभी भी हैं, बट कॉलेज में ऑब्वियसली हम हमारी जिंदगी शुरू होती है। तो क्या आपका कॉलेज को एजुकेशन था?
1: यस।
0: ओके, बहुत सारी जिम्मेदारियां हमें घर के प्रति और या कोई फिनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि हम ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो फिनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, तो क्या इस वजह से आपको बाकी काम भी करने पड़ते हैं? आप जैसे आपने कहा कि नई ड्यूटी आप कर रहे थे,
1: फैमिली की तरफ से तो कुछ नहीं था, मुझे लगा कि फादर कितनी इनकम नहीं थी,
0: ठीक है,
1: तो मुझे लगा कि जो शौक है अपने, अगर मैं कमाता हूँ चाहे 10 कमाऊं 20 कमाऊं, तो मैं अपने ऊपर
0: उसी से पूरा करूं,
1: उसी से पूरा करूं
0: जी।
1: तो वो तो मना करते थे, तू नाइट ड्यूटी क्यों कर रहा है, मैं कमा तो रहा हूँ, लेकिन अच्छा। मेरा दिल नहीं मानता था। मैं क्या क्या करूंगा यहाँ, फिर इधर उधर घूमूंगा। तो उस टाइम मेरी पढ़ाई भी मैं रात को कर लेता था साथ में, जब मैं कॉलेज में था ये चीजें तो थी। लेकिन कहते हैं कि गुरु बिना कोई गति नहीं है
0: जी।
1: ये तो देखो सर, एक दोस्त है, दूसरे दोस्त कहता है यार तू बहुत अच्छा डांस करता है, एक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन उसके कहने से कुछ नहीं होता। हर कोई अगर आपको जो पसंद करता है वो तो कहेगा, हर माँ के लिए
0: एक बच्चा तो लाडला ही है,
1: पीला वो लाडला ही होता है, सुंदर होता है, टीका लगा देते हैं तो इसी तरह। बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था। और उस टाइम सर ज्यादा दिन की तो बात है नहीं, 2007-08 की बात है, तो इस टाइम जो एक खुमार चला फिल्मों का, तो उसमें ये था अच्छा दिखना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, वो मैं था नहीं। उसके साथ ही ना अच्छा डांस आना चाहिए और आपको
0: अच्छी एक्टिंग होनी चाहिए।
1: मैंने कहा शकल तो चलो कोई नहीं, मेकअप वेकअप करके एक दो फोटो खिंचाए उसमें तो अच्छा लग रहा था। मैं कहा चलो वो तो मैं कर लूंगा,
0: मैनेज कर लेंगे।
1: तो कॉलेज में कई बार ऑडिशन हुआ करते थे यूथ फेस्टिवल के लिए, आते थे कई, आए थे, उन्होंने नाम नहीं ले सकते क्योंकि सब अपनी जगह गुरु गुरु हैं, बट जब वो बोलते थे कि इस तरह करो, तो मुझे कहीं ना कहीं वो फील नहीं आता था। मैंने कहा ये तो ऐसे है कि आप चिल्ला रहे हो, चिल्ला के आप एक्टिंग नहीं दिखा सकते, बट कहीं ना कहीं उनको चाहिए होगा उस वाले
0: शायद किरदार की जरूरत उस समय वो,
1: लेकिन मेरे को ये नहीं था। तो मुझे लगा कि यार नेचुरल एक्टिंग, आप आराम से प्यार से बोलो जैसे हम रियल में बोलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्रेशन आप दे लो, आप सिखाने आए हो, आप पहले से चाहते हो कि सिखा हुआ बच्चा आपके पास आए, तो फिर आप सिखाओगे क्या। तो फिर इसी तरह मुझे पता लगा कि
0: यहाँ भी मैं आपको रोक लेता हूँ अभी हम आपकी जो ये जर्नी है, हमें जिज्ञासा है इसके बारे में, सुनो और हमारे जो श्रोता हैं उनको भी जिज्ञासा हो रही होगी ये जानने के लिए कि आगे जब आपको लगा कि अगर मुझे कोई भी काम करना है उसके लिए मुझे पहले सीखना जरूरी है, फिर आपने क्या किया है। बट मैं चाहता हूँ आपसे ये पूछूं पहले, तो क्या संगीत की आपने अभी बात की, डांस की आपने बात की, तो क्या संगीत के साथ आप जुड़े हैं, क्या संगीत आप सुनते हैं?
1: सभी को पता है कि संगीत के बिना एक तरफ से जीवन व्यर्थ। अगर हम भी कहीं बैठे होते हैं सुकून के लिए हम म्यूजिक सुन लेते हैं, रिलैक्स, आजकल एक थेरेपी हो गई है कि आप म्यूजिक पढ़ो सुनो, आप स्ट्रेस से बाहर आ जाओगे। संगीत तो एक तो कहते हैं ना, एक टाइम ऐसा आ गया था कि संगीत ना सुनो तो नींद नहीं आती थी मुझे। और फिल्म लाइन में तो एक छोटी सी छोटी चीज के लिए भी म्यूजिक का बहुत ज्यादा रोल है
0: जी।
1: तो म्यूजिक तो एक अहम है, और इस तरह जो हमारी जिंदगी चल रही है तो उसमें अगर म्यूजिक ना हो तो वो बेरंग हो जाएगी।
0: तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा गाना आपका जो पसंदीदा हो हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे और ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा। कौन सा ऐसा गाना है जो आपके मन में इस समय आ रहा है?
1: मैं सर लाइफ यानी जिंदगी की बात कर रहा हूँ
0: जी,
1: तो मैं ज्यादातर इस एक गाना है जो मैं गुनगुनाया करता हूँ, और जो उतार चढ़ाव है उसके लिए मुझे लगता है ये जो सॉन्ग है ये उस पे फिट बैठेगा। वो है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।

0: अनिल जी, अगर अभिनय की ओर दिलचस्पी थी तो डांस भी क्या मन को भाता था?
1: मुझे जो लगता है कि जो डांस करना, उस सॉन्ग के ऊपर एक्सप्रेशन देना, वहीं से तो एक एक्टिंग की शुरुआत हुई। कि मुझे लगा कि देखो, डांस में तो हम एक्सप्रेशन इधर उधर मुंह बना लेते हैं, लेकिन रियल जब आप बोलते हो, उसके साथ जो एक्सप्रेशन आना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए एक्टिंग सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: तो क्या हम ये मान के चलें कि जब एक एक्टर घर से बाहर निकलता है तो जितने लोग आसपास होते हैं तो क्या उनकी नजर उनके एक्सप्रेशंस पे रहती है, ताकि वो ये समझ जाए कि किस किरदार की एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए?
1: यस सर, जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम रियल लाइफ में भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन से, हाव भाव से पता लग जाता है कि ये बंदा क्या कहना चाहता है, या जो बोल रहा है वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा
0: ऐसा हो सकता है?
1: है।
0: ये बात
1: ऐसा
0: तो
1: हो
0: बहुत आपने बहुत आपने
1: सकता
0: पते की बताई, यानी कि अगर हमने गुस्सा करना है तो हम हंस के गुस्सा नहीं कर सकते, कि वो दो चीजें आपस में मेल नहीं खाती है। तो गुस्सा करना है तो हमें चेहरे पे ऐसे भाव लाने पड़ेंगे ताकि वो गुस्सा दिखे। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अभिनय जुनून से, दृढ़ता से, पक्के मन से होता है। क्या ऐसे भी समय आया कि एक्टिंग आप करना चाहते थे पर समय अनुकूल नहीं था?
1: यस सर, अभी मैं अपनी बात स्टार्ट करना चाहूंगा कि जब मैं कॉलेज में था, एक तो नाइट ड्यूटी किया करता था मैं, तो 7 बजे से सुबह 7 बजे तक की ड्यूटी होती थी। वहां रात भर जागना होता था, आप सो नहीं सकते थे, और सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लासें होती थी
0: आपका
1: कॉलेज की।
0: कॉलेज? जी
1: अब उसके बाद 5 से 6 आपको कंप्यूटर सेंटर भी जाना है,
0: जी
1: तो अब जो 3 बजे से 5 बजे का जो टाइम है, उसके अंदर आपको खाना भी है,
0: और आराम भी करना
1: आराम
0: है।
1: भी करना है। तो मैं सोचता था आराम तो पूरी जिंदगी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो अभी जो एक एज है, उसमें जितना ज्यादा सीखो उतना कम है, क्योंकि हमारा शरीर उस टाइम हमारा साथ दे रहा होता है कि भाई अभी पावर है, तू चाहे ना भी सो तो कोई बात नहीं है, संडे तो है, उस दिन सो लियो किसी दिन। तो जब मैं कॉलेज में था, आपको मैं बताना चाहूंगा सर कि जब हम कॉलेज में थे, एक गुरु की खोज मैं कर रहा था, तब मेरे फ्रेंड ने बताया कि कहीं वर्कशॉप है, उसका नाम प्रीतम है, हम साथ में रहते थे।
0: जी
1: तो मैंने कहा चल चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि मैं कहा देख, गुरु तो चाहिए चाहे जैसे करके। अब मुंबई तो हम जा नहीं सकते, एक तो इतनी खतरनाक कहानियां हमने सुनी होती है मुंबई के बारे में, तो सोचे नहीं। तो हमने कहा क्यों ना अंबाले में देखे। तो हम एड्रेस हमें मिल गया था, हम घूमते हुए निकले, ढूंढ रहे कहाँ है कहाँ, कोने पे। जब हम अपना गांधी मार्केट के उस लास्ट में इंदिरा पार्क जो पार्क है वहां पहुंचे, तो देखा कि ऊपर है, तो हम ऊपर गए। तो मुझे लगा कि हम दो थे, बाकी आने वाले थे, कोई आया नहीं था। तो उस टाइम आपसे मुलाकात हुई सर। तो अब मैं आपको बताऊं, शायद आपको भी नहीं उस टाइम पता होगा, तो ये था रजिस्ट्रेशन फीस थी उसमें, तो हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने अपने दोस्त से बोला, मैंने कहा करना पड़ेगा, तो उसके पास पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चल दे दे, मैं तुझे दे दूंगा। फिर मैंने उससे पैसे लिए, फिर हमने रजिस्ट्रेशन कराया, और 10 दिन हमने जो वर्कशॉप है किस तरह बोलते हैं, आपने सर बताया था, मैं अभी जो पहले मैंने जो बातें बोली है वो आपसे सुन के ही बोली थी। ये तो आप, मैंने अपनी तरफ जब आपने तारीफ कर दी कि आपने बड़ी बात बोल दी, जब मैं वर्कशॉप ले रहा था तो आपने ही बताया था। एक आपने कहा कि अच्छा, एक जिसका पैर खराब होगा वो कैसे चलेगा, हमने सबने चल के दिखा दिया। तो कहा कि कैसे, ये आपने कैसे करा, हमने कहा जी फिल्मों में देखा, सबने कहा फिल्मों से देखा है, नॉर्मल यही बोला कि फिल्मों से देखा। फिर आपने बताया कि अगर मान लो एक सब्जी वाला है, अगर उसका रोल करना हो तो मैंने बोला फिल्मों में देख लेंगे। फिर आपने बताया कि जो आपके आसपास हैं उनको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने से आपको कई नए नए करेक्टर मिल जाएंगे। सर आप यकीन नहीं मानेंगे, आज मैं जहां भी हूं, मैं कभी भी फिल्मों में किसी भी करेक्टर को मैं कैच नहीं करता हूं। मैं बस में जाता हूं या कहीं भी जा रहा होता हूं, मैं लोगों को चेहरे देखता हूं, और मैं अपने में खुश रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, मुझे कई करेक्टर रियल लाइफ से मिलते हैं। तो वहां से मैंने या आप जब सीखा तो मैं आपको, आप भी थे वहां पे, आप सिखा रहे थे, तो जो किस्सा मैं वो श्रोता जो है मैं उनको बताना चाहूंगा। 10 दिन का था, बहुत अच्छा लगा। हमारे लास्ट जब हमें करना था इसको सुभाष पार्क में इसका होना था, तो एक लड़की का किरदार भी था इसके अंदर। मैं बना हुआ था सब्जी वाला,
0: मुझे अब याद आ रहा है,
1: सब्जी वाला मैं बना हुआ था। तो हम कर रहे थे, अच्छे से एक्टिंग हो गई। अब ये था जो लड़की वाला पोर्शन था वो खाली जा रहा था, तो हम सारे कर रहे थे। तो एक दो दिन पहले पता लगा उसकी थोड़ी शायद तबीयत खराब थी, वो आ नहीं पाई। तो कह रहे अब इसका कौन करेगा, तो मुझे वो कैरेक्टर मुझे दे दिया गया। तो मैंने अब क्या था उसमें आवाज थोड़ी सी
0: चेंज
1: करनी थी और चुन्नी को ओढ़ना था, घूंघट करना था। तो वो फिर वो कैरेक्टर फिर मैंने करा, उसमें रोने का भी था, चूड़िया तोड़ के उसके छाती के ऊपर मारना, मैंने तेजी से मार दिया था उसके, करो धीरे मारो। तो ये हो गया था। फिर उसके बाद जब फाइनल जब हुआ वहां पे, और ये बहुत अच्छा था सर, आपने देखो कई बार क्या होता है बच्चे को जब हम ऑन द स्पॉट बोलते हैं ना वो घबरा जाता है,
0: ठीक।
1: तो जब वहां पे था ऑडियंस को इकट्ठा करना, अब
0: पार्क में जो चलते हुए लोग हैं उनको अट्रैक्ट करना, बुलाना। हाँ, जी।
1: अब कह रहा कि भाई चलो अब इनको बुलाओ, अब सब एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं। आपने कहा अनिल, मैं भी देखा, मैं कहा ये क्या, मैं कहा बोलूं क्या। फिर मुझे वो जो बताया आपको कि बचपन में जो सिपाही था वो ढोल बजाते बजाते, मेरे को याद तो वही आया था। तो हमारे पास वो बजाने वाला था, तो मैंने डफ
0: जी,
1: तो डफ लेकर फिर हमने शुरू करा, सुनो सुनो। फिर वहां पे जो
0: काफी सारे लोग आए थे, और हमारा वो पहला वे थिएटर ग्रुप का वो पहला एक्सपीरियंस था कि जो हमने कहीं स्टेज के बाहर किसी जगह किया था, जहां हमने लोगों को इकट्ठा किया। और उसके बाद मुझे याद है उस नाटक का नाम, छोटे नाटक का नाम था बेल नींबू, और इसको डायरेक्ट किया था अतुल वशिष्ठ ने, जो हमारे वीटी जी के मेंबर उस समय थे।
1: yes,
0: जिंदगी बहुत आगे की ओर बढ़ती है, जितने भी लोग वे थिएटर ग्रुप के साथ जुड़े, बहुत सारे लोग तो आगे की ओर बढ़े, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आज भी हमारे साथ कोई संपर्क नहीं है। पर हम आपकी बात पे आते हैं, तो आपने ये कहा कि जो एक अभिनेता है उसको ये ऑब्जर्व करना जरूरी है जब वो घर से निकलता है, तो किस व्यक्ति की क्या हावभाव है वही आप किसी किरदार में आप डाल सकते हैं।
1: यस,
0: तो वे थिएटर ग्रुप के साथ जो आपके जो जर्नी शुरू हुई थी, क्या आपने इससे पहले भी यहाँ अंबाला में किसी ग्रुप के साथ काम किया था या ऐसे किसी नाटक में परफॉर्म किया था?
1: आपको बताया जैसे स्टार्टिंग में सर, गुरु तो कोई था नहीं, बस अपने जिधर लिखना है लिख लो, बोलना है बोल लो, कैसे बोलना है सिंपल चल रहा था, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा था। तो उसके लिए एक गुरु की खोज में लगा हुआ था कि कोई मिले, कईयों से मिला था मैं, तो मतलब मुझे वो फील नहीं आ रहा था कि यार ना कहीं कमी है। तो फिर जब मैं आपका वर्कशॉप था वो लगाया, और सबसे बड़ी बात मैं उसको अच्छा डे बोलूंगा अपनी लाइफ का कि एक साथ मैंने 3 किरदार निभाए थे, और मैं शायद मुझे लगता है कि ऐसा कम मौका मिलता है लोगों को एक अपोजिट करेक्टर, एक फीमेल आर्टिस्ट भी, और वो भी 2 दिन पहले उसके डायलॉग्स याद करके उसको प्ले करना, सब्जी वाले का रोल प्ले करना, और ऑन द स्पॉट एक अपना लोगों को इकट्ठा करना, मुनादी
0: अनाउंसमेंट
1: का। तो ये चीजें सर बहुत अच्छा लगा उस चीज को फॉलो करते हुए। आज अच्छा लगता है जब हम सामने वालों को बताते हैं, उसे भी बोलते हैं कि आप ऑब्जर्व करो। कई बार क्या होता है ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उन्हें फिल्मों के कई बार बिजी भी रहते हैं, तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि आप ये कैरेक्टर लो और आप अच्छे से काम कर सकते हो।
0: देखिए अनिल जी, मैं ये जरूर कहूंगा कि वे थिएटर ग्रुप के साथ आपने वो समय हमारे साथ बिताया, एक ग्रुप कोई सा भी हो वो तभी चलता है जब वो निरंतर काम करता है, और ऐसे ही निरंतर काम अनिल जी ने भी किया, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि वे थिएटर ग्रुप भी बहुत खुश होता है आपके काम से। और आज आप अच्छे फिल्मकार हैं, आपने कई सारे आपने फिल्में बनाई हैं, हम उस विषय में भी बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि उसी वे थिएटर ग्रुप के माध्यम से अंबाला कैंट को ये पहला FM स्टेशन मिला है, और आज भी आप ये मान के चलें कि आप वे थिएटर ग्रुप के साथ ही जुड़े हैं, और आज इसका हिस्सा बने हैं। एक हम और गाना यहाँ पर लेते हैं अनिल जी की पसंद का। श्रोताओं, आप सुनिए ये गाना और हम एक ब्रेक के बाद आपके साथ फिर रूबरू होंगे।

0: अनिल जी, मुझे याद है एक बार आपके कॉलेज में आया था, आपके सहयोगियों ने आपने बहुत मान सम्मान दिया था, आप मुझे अपने कॉलेज के रिकॉर्डिंग रूम में भी ले गए थे। आज बारी हमारी आई है आपको अपने रिकॉर्डिंग रूम में आमंत्रित करने का, कैसा लग रहा है?
1: सर बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप आए थे तो मैं बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा खुश था, तो मतलब मैं चाह रहा था कि अपने गुरुजी को मैं सारी चीज़ें दिखा दूँ कि सर मैंने ये चीज़ मंगवाया, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को प्रैक्टिकल कराने के लिए। मैं सभी सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि जब सर मेरे पास आए थे तो मैं एस ए जैन कॉलेज अम्बाला सिटी, वहाँ पर मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर मैं कार्य कर रहा था। मास कम्युनिकेशन जो मेरा डिपार्टमेंट था, उसमें मैं बच्चों को, मेरा ज़्यादातर फोकस होता है प्रैक्टिकल में। मैं 5 साल एस ए जैन कॉलेज में मैंने वहाँ सर्विस दी है। मैं वहाँ कैसे पहुँचा मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं फिल्मों में जाना चाहता था, मैं टीचिंग में कैसे चला गया। मेरे एक सर हैं अतुल यादव सर, हिस्ट्री वाले टीचर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि बेटा तुझे कितनी फिल्में मिल जाती हैं? मैंने, और कब कब मिलती है? मैंने कहा साल में एक आधे तो मिल ही जाती है। कह रहे पैसे मिलते हैं? मैंने कहा नहीं। कह रहे फिर फैमिली कैसे चलाओगे? मैं सोचा कि ये बात तो सही है। तो उन्होंने कहा बेटा साइड बाय साइड इनकम का सोर्स रख, जिससे तेरा परिवार भी चले, ये शौक तो चलते रहेंगे।
0: ठीक है,
1: तो उनकी बात मान के फिर मैंने उस टाइम प्रिंसिपल थे प्रदीप स्नेही सर, उनके पास मैं गया, इंटरव्यू हुआ, मेरी सिलेक्शन हुई, तो मैंने वहाँ ज्वाइन करा। 5 साल काम करने के बाद कोरोना के बाद फिर मैं वहाँ, ये अकाल डिग्री कॉलेज है संगरूर में, वहाँ पे मैंने 1 साल सेवा दी। उसके बाद जेएमएन कॉलेज में 1 साल पढ़ाया। जब यहाँ पढ़ा रहा था तो मेरी पीएचडी में मैं इन्वॉल्व हो गया। फिर उसके बाद मैं कुरुक्षेत्रा चला गया, जहाँ अब मेरा गाइड मुझे अलॉट होंगे जिनके अंडर मैं पीएचडी।
0: ये जो जिंदगी का सफर है, इसके लिए जो हमारी पढ़ाई लिखाई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर मरहले पे हम कुछ नया सीखते हैं और तभी जाके हम जिंदगी के साथ रूबरू होते हैं। आगे चलते हैं, आपकी उपलब्धियां तो अब बहुत हुई हैं, श्रोताओं को आप खुद ही विस्तार में बताएं कि आपने फिल्म बनाने में या आपने जो बहुत सारे भजन हिंदी और पंजाबी में या हरियाणवी में आपने तैयार किए हैं या कुछ और आपने किया है, तो कृपया आप विस्तार में बताएं।
1: जब इस लाइन में आया तो पहले जितने भी शॉर्ट्स फिल्में हैं, मैं पहले बताना चाहूँगा कि 30 से 40 फिल्में, शॉर्ट फिल्में मैं कर चुका हूँ। 2 फीचर फिल्म है जो भोजपुरी में थी, वो हाफ हो गई थी, बजट की वजह से वो रोकनी पड़ी है। उसके बाद भोजपुरी कम से कम 60-70 गाने हैं जिसमें मैं एज एक्टर मैंने काम करा हुआ है। उसके बाद पंजाबी और हरियाणवी डिवोशनल सॉन्ग, उसमें भी एज अ मॉडल मैंने वर्क करा हुआ है, और साथ में एडिटिंग भी मैंने करा जो सोनी टेक और कई अच्छे अच्छे चैनल्स जो है उन्होंने सिलेक्ट करा था। तो इस तरह काफ़ी सारा, और अभी मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारी 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो हमारे टाइम लाइन पे है, हम उस पर काम करेंगे।
0: यहाँ पर मुझे आपने एक बात कही कि आपने भोजपुरी में भी बहुत सारे गाने किए हैं और तैयार किए हैं, तो भोजपुरी क्या वो भाषा है जो आपके बचपन के साथ जुड़ी है, जब आपने, जहाँ आपका जन्म हुआ, और क्या वहाँ पर ये बोली जाती है या आपके घर में भी भोजपुरी या अवधी बोली जाती है?
1: सर अभी यहाँ पे जैसे हम दूर रहते हैं तो लोगों को ज़्यादातर जो फिल्में सुनते हैं देखते हैं वो भोजपुरी उनको लगता है। यूपी में अवधी बोली जाती है।
0: अच्छा,
1: भोजपुरी अलग एक बिहार की एक भाषा है जो बोली जाती है। वहाँ फिल्म जो है वो ज्यादा उठ चुकी है, इसलिए भोजपुरी सबके जुबान पे होती है। कोई यूपी से भी आता है तो उसे भी भोजपुर का बोलते हैं, लेकिन जो अवधी है बॉलीवुड में भी यूज की जाती है। ये मैं उस शहर से हूँ, उस स्टेट से हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जाती है। लोग भोजपुरी बोल देते हैं लेकिन अवधि होती है।
0: अच्छा, वो अवधि होती है, वो भोजपुरी नहीं होती है?
1: नहीं होती है।
0: तो आपने इतने सारे, आपने कहा कि गाने आपने किए हैं, कुछ फिल्म्स भी है जो बाद में तैयार कंप्लीट नहीं हुई, तो क्यों ना हम आपसे भोजपुरी में या अवधि में, जिसको हम भोजपुरी कहते हैं असल में वो अवधि है, तो कुछ आप हमें सुनाइए और हमारे श्रोताओं को भी सुनाइए।
1: मैं 2 लाइनें गुनगुना दूंगा।
0: जी जी।
1: उसको थोड़ा अवधि वाले भी अब क्या कर रहे हैं कि कमर्शियल के चक्कर में वो थोड़ा भोजपुरी टच मार देते हैं। मैं कहूँगा ये मेरी एल्बम का भी गाना था और ये गाना मैंने लिखा था उस टाइम था, ये था टाइटल सॉन्ग था भौजी तोहार बहिनिया। तो उस टाइम क्या था, थोड़ा शहर से लोग गांव जाते थे, लड़कियां भी जाती थी ना, तो जींस विंस का बड़ा वो रहा है। तो मैंने लिख दिया था और ये लिखा था मैं जब छोटा था तब, लेकिन मौका मिला था बहुत टाइम, तो मैं उसको थोड़ा सुनाऊंगा। ये था अरे भौजी तोर बहिनिया जींस पहने ली, अरे भौजी तोर बहिनिया

0: तोर बहिनिया जींस पहने ली, ये सब।
1: बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से पेश किया। और सबसे बड़ी बात है कि ये होता है कलाकार जो किसी भी जगह पर कहीं पर भी अपनी प्रस्तुति देता है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता है उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक ये थोड़ा सा हमारे जो इंटरव्यू है उसमें एक ये थोड़ा सा चेंज आया। आपसे इसी के साथ जुड़ता हुआ एक सवाल और करना चाहूंगा, आपकी फिल्में ज्यादातर सामाजिक विषयों पर बनी है, ऐसा क्यों?
0: सर बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं ज्यादातर जैसे यूपी से बिलोंग करा और मैं स्टेशन पे रहा तो मैंने लोगों को देखा। अगर आप किसी की सेवा करना चाहते हो तो धन से कर सकते हैं, तन से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं। अब ये तीनों मेरे पास नहीं था,
1: ठीक है,
0: पैसे भी नहीं थे और मन से हम सेवा कभी कर नहीं सकते, उसके लिए शरीर का यूज होगा। अब उस टाइम मेरे पास समय नहीं था कि मैं टाइम दे सकूं। तो मेरा ख्याल आया कि जो वीडियो है या फिल्म है वो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप उन लोगों तक भी अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं जो आपको नहीं जानते या आप उनसे कभी मिले नहीं हो। तो फिल्म जो एक, जैसे मैंने कहा, एक माध्यम है। तो मैंने सोचा कि जो मैं अगर पैसों से या किसी की हेल्प नहीं कर सकता तो मैं क्या छोटी छोटी फिल्में बना के मैं लोगों को जागरूक करके उनको किसी नुकसान से बचा के या किसी चीज़ का क्या नुकसान है, इन चीज़ों को लेकर मैं फिल्में बनाता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं फिल्मों के जरिए मैं एक समाज सेवा कर सकूँ, इसलिए मेरे जितने भी फिल्में हैं मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कई बार कोई मुझे यह ना कह दे, अच्छा ये अनिल यादव वो है जो सामाजिक फिल्में बनाता है।
1: जी जी।
0: तो बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है सर।
1: देखिए, समाज के अंदर रह के हर कोई व्यक्ति अपने तरीके से अपना योगदान देता है। आपने बहुत ही सही तरीका ये चुना कि अगर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, फिल्म या म्यूजिक के द्वारा आप तक उस तक पहुंचते हैं। और ये चीज जो आपने सोची और ये काम कर रही है, आपके फिल्में हम भी देखते हैं। जब आपकी कोई भी फिल्म आती है तो हम अपना समय निकाल के उसको देखते हैं। हमें पता है कि उसमें कोई एक सामाजिक सरोकार होगा, उसमें कोई शिक्षा होगी जो लोगों के लिए काम आएगी। इसके साथ ही मुझे याद आ रही है एक फिल्म आपने स्नेह बनाई, और उस स्नेह में भी आप लोगों ने, और जो उसके निर्माता सुभाष बंसल जी हैं, और आप लोगों ने एक ऐसा मुद्दा उसमें लिया जो कैंसर के ऊपर था, और आप लोगों ने लोगों को ये बताना जरूरी उसमें समझा, और आपने बखूबी उसमें बताया कि कैंसर की लड़ाई के लिए हमें पीछे कभी रहना नहीं चाहिए और आखिरी दम तक हमें उसके साथ लड़ना चाहिए। हमने एक वेब थिएटर ग्रुप के ओर से एक नुक्कड़ नाटक अम्बाला में किया था जिसमें हमने कैंसर के लिए लोगों को जागरूक किया था, तो वो फिल्म हमें बहुत पसंद आई और बहुत सारे लोगों ने आपको उसमें सराहा भी। तो ये आपका जो सोचना है कि शाबाशी देता हूं, आपने ये सोचा कि अगर हमने एक व्यक्ति तक पहुंचना है तो फिल्म के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। अब आप एक फिल्म्स के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं और इस नाम से अब आपको जाना जाता है, तो मैं ये जानना चाहूंगा और श्रोताओं को भी हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या है।
0: सर जो द एके फिल्म प्रोडक्शन है ये बेसिकली मैंने इसलिए खोला कि ताकि कुछ जिनको नीड है, जो इसमें काम करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं हम शूट करते हैं हमें परमिशन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए मैंने ये फर्म को रजिस्टर करवाया। तो जितने भी सोशल इश्यूज हैं सारी फिल्में मैं इस पे डाल देता हूँ, फ्री है, कोई मैं कहीं बेचता भी नहीं हूँ। मैं अभी जैसे फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड होती है, उसके ऊपर बनाया था, जैसे आपने बताया कैंसर के ऊपर बनाया, एक बायोपिक गो रवि गो बनाया जिसमें सारे जो डबिंग हुई है यहाँ पे भी हुई है, आपने एक कीमती वक्त दिया था हमें। इसी तरह एडिक्शन पे हमने काम करा हुआ है, नशे के ऊपर काम करा, रोड सेफ्टी, इसी तरह बहुत सारी है। मैं जो सुनने वाले हैं उन्हें भी कहता हूँ कि आप फिल्मों को एंटरटेनमेंट के पर्पज से तो देखते हो, साथ में जो उसका मैसेज होता है उसको जरूर देखें और लोगों को शेयर करें, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। सर जो आपने सवाल पूछा कि आने वाला मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, मैं सुनने वाले दर्शक को बताना चाहूंगा कि जो टाइटल है वो एडिक्शन है। जी हाँ, एडिक्शन आपके दिमाग में आ गया होगा, नशा, लेकिन एडिक्शन नशा ही नहीं, आज एक एक जो सबसे बड़ी समस्या जो बनी है वो है मोबाइल फोन। जी हाँ, मैं मोबाइल फोन के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहा हूँ, जिसे लिख चुका हूँ मैं, सभी को बहुत अच्छी लगी है, मैं इस पे जल्द काम करने वाला हूँ और करेक्टर भी सर्च कर रहा हूँ, जिसपे गुरुजी को इंस्पेक्टर का रोल मैं दे रहा हूँ, अहम रोल, क्योंकि इंस्पेक्टर को गलत नजरिए से देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है वो अच्छा, एक अच्छा काम कर रहे हैं। पर तो मैं जो हमारे श्रोता हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि जो मोबाइल फ़ोन है वो बड़े तो चलो कहीं ना कहीं उनके पास टाइम होता है, वो लगा तो लेते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उसका वो मिस यूज़ कर रहे हैं, वो किस तरह उससे एडिक्ट होते हैं, ये छोटी सी स्टोरी है। तो मैं चाहूँगा कि जब बन जाएगी तो हमारे गुरुजी उसके बारे में बताएंगे, तो आप सर सभी उसे जरूर देखें।
1: आपने सही कहा कि कोई भी सुविधा हमें मिलती है उसका सदुपयोग भी किया जाता है और उसका दुरुपयोग भी होता है, और मोबाइल खास करके इस समय हम सबके लिए एक परेशानी का बाइस बना है। इवन जो बड़े लोग हैं, अगर घर में कोई बात सीरियस चल रही होती है और बीच में मैसेज का टोन बजता है तो हम मोबाइल उठा के देखते हैं कि वो मैसेज किसका है, तो जो सीरियस बात चल रही होती है उसमें भी विघ्न पड़ता है। तो ये एक बड़ी समस्या है, बहुत अच्छी बात है, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए, ताकि ये जो कंसेप्ट है ये सबको छुए और ये सबको एक मैसेज अच्छी तरह से दे पाए। हम मोबाइल को जरूर यूज करें पर एक लिमिट तक यूज करें, ताकि ये हमारे लिए कल को कोई परेशानी का बायस ना बने। अनिल जी एक्टर है, राइटर है, एडिटर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, और क्या ऐसा लगता है कि कुछ रह गया है जो अभी करना बाकी है?
0: एक सपना है सर, वो रह गया।
1: जी बताइए उस सपने के बारे में। और
0: थोड़ा गला खराब हो गया है,
1: कोई बात,
0: सुनने वालों के लिए माफी चाहूंगा। मेरा सपना सर ये है कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलू जहां बच्चे सीखना चाहते हैं, जिन पे पैसे नहीं हैं,
1: जी,
0: बस वो शिद्दत के साथ वो सीखें, जैसे फिल्म बनाना,
1: जी।
0: और वैसे मैं कहूं कि मैं मुंबई को अंबाला में लाना चाहता हूं, ये मेरा एक सपना है सर।
1: बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, और मैं भी अपनी तरफ से ये कहना जरूर चाहूंगा कि मुंबई जाने के बजाय अगर हम घर बैठ के ये काम करें तो सबसे अच्छा है। उदाहरण के तौर पर हमने 2 साल पहले अंबाला में ही एक दूरदर्शन के लिए एक सीरियल बना जिसमें हम लोगों ने काम किया, और वो अंबाला में ही शूट हुआ और पूरे हमारे देश में वो दूरदर्शन नेशनल पर 2 बार आज तक टेलीकास्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं करना चाहते हैं, बट अगर हम मुंबई जाते भी हैं तो मेरी राय ये है कि अच्छी तरह से तैयार होके अगला कदम मुंबई के लिए आप उठाएं, और कल को ऐसा ना हो कि मुंबई जाके आपको अगर कामयाबी नहीं मिलती है तो पीछे मुड़ के आना आपके लिए मुश्किल हो। हम इस कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं, और एक पर्सनल सवाल अनिल जी से, काम और परिवार का संतुलन आप कैसे बनाते हैं?
0: सर ये बहुत मुश्किल सवाल है, बट अगर आपको सपने सच करने हैं तो कहीं ना कहीं अपने फैमिली को हम कहीं ना कहीं उनको मैनेज करते हैं, मैनेज मतलब कि हम उनसे सलाह लेते हैं कि मुझे एक मुकाम हासिल करना है, आप हमारा साथ उसमें दो। तो मेरी धर्म पत्नी है, मेरे ब्रदर है, मेरी मदर है, ये हमेशा मेरा साथ देते हैं, ये कहते हैं कोई बात नहीं, मैं कभी कभी लेट भी हो जाता हूँ तो ये सपोर्ट करते हैं। तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अच्छा मुकाम हासिल करना है।
1: ये आपने एकदम सही कहा कि अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो जब तक परिवार का साथ ना हो तो हम आगे की ओर नहीं बढ़ते हैं।
0: सर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सुनने वाले जो श्रोता हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि बीटीसी जो ग्रुप थिएटर ग्रुप है मैं इसके साथ आज भी जुड़ा हूं और आगे भी जुड़ा रहूंगा, और साथ में जो वितस्ता जो रेडियो है FM मैं इसके साथ भी जुड़ा हूं और मैं इसके साथ जुड़ा रहूंगा, और मेरे जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं मैं सर से डिस्कस भी करता रहता हूं और मुझे अच्छे गाइड भी करते हैं सर।
1: अनिल जी आपका ये आपका बड़प्पन है कि आप जब भी कोई काम करते हैं और उसमें अगर आप राय लेते हैं, हमें राय तो ज़रूर सबसे लेनी चाहिए, पर करना वही होता है कि जो हमारे मन में है, पर उस राय लेने से कुछ न कुछ रास्ता हमारा क्लियर हो जाता है। रेडियो वितस्ता और वह थिएटर ग्रुप हमेशा द AK फिल्म्स के साथ है, और मुझे याद है आपने एक कार्यक्रम शुरू किया था, आपने उसकी शुरुआत मेरे जीवन के ऊपर आपने इंटरव्यू किया था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि आप आए और हम मैं भी अपने जीवन के बारे में और जो मेरी जीवन यात्रा थी उसके बारे में कह सका। इस प्रोग्राम का अब समय समाप्त होने जा रहा है। अंत में मैं अनिल जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप FM 90.0 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं?
0: मैं अपने सुनने वाले, अपने चाहने वाले और जो मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं और जो जिन्होंने मुझे गाइड किया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं अपने सुनने वालों को मैसेज क्या, मैं एक राय, एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा जो हर किसी को उसको फॉलो करना चाहिए। कभी भी कोई भी काम करना हो उसके बारे में अच्छे से सोच लो। अगर वो काम नहीं होता है तो कभी भी उदास नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, उस पे और मेहनत करनी चाहिए ताकि, क्योंकि जितनी बार आप हारोगे उतनी बार आप सीखोगे। सीखने से बंदा आगे बढ़ता है, कभी भी पीछे अगर आपको कोई ढकेलता है आप उसे हताश नहीं होना है, आगे बढ़ते जाना है। जैसे रेडियो वितस्ता का एक पंच लाइन है, हम सफ़र जिंदगी का, इसी तरह आपकी जो जिंदगी है उसको हंसी खुशी हंसते गाते गुजारते रहें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका। आप आज आपने समय निकाला, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातें कही और मुझे आशा है कि अंबाला के सभी लोगों तक हम ये बात जब रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से पहुंचाएंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और हमारी भी यही कोशिश है कि अंबाला के जितने भी लोग हैं वो एक एक करके हम उनको यहाँ स्टूडियो में बुलाएंगे, उनकी हम बात रिकॉर्ड करेंगे और सभी अंबाला वासियों तक उस बात को पहुंचाएंगे, क्योंकि FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता अंबाला कैंट का पहला FM स्टेशन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनिल जी आपसे इजाजत लेना चाहूंगा और आपका धन्यवाद भी कर रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
0: नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विविधता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रे

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: ilk hey dala çıkmış. İlk hey Lata Mangeşkar. İlk hey Radio Vitasta. हम सफर जिंदगी का
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: फुकड़ दिन तो तू।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत। हम सुन रहे हैं 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी दा आप दा अपना रेडियो। आप जी दी आवाज दिल तो रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

मैं चाहुंदा हां इदां ही तू हसदी रह, दूरों दूरों दिल मेरे विच वसदी रह। मिलके मैनू मुख तो तेरे हासा ना उड़ जे, बिन देखे ही मेरियां गल्लां दसदी रह, बिन देखे ही मेरियां गल्लां दसदी रह।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता असले पौन पटाके सुन मेरे दिलदारा मेनू 90.0 में।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: क्या हुआ? परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

देश है अपना देश है अपना देश है अपना देश है आज से दब रहे थे लाज से अपना देश है आज से दब रहे थे लाज से दूसरों के राज से उनके तख्त ताज से उनके तख्त ताज से कट गया है।

0: आपके लिए आज के कृषि समाचार। इस कार्यक्रम में मेरा साथ देंगे,
1: नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त नैना।
0: मक्का की 15 जुलाई तक बिजाई करें, संकर व बायो फोर्टिफाइड किस्में अपनाएं, 4 से 5 बार करें मिट्टी की जुताई, 1 एकड़ में 8 किलोग्राम बीज डालें। मक्का की खेती के लिए रेतीली दोमट व दोमट मिट्टी और अच्छे जल निकासी वाले खेतों का चयन करें, 4 से 5 जुताई कर 2 बार सुहागा लगाएं ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और खेत में ढेले ना रहे। मक्का की बिजाई केवल ऊंचे इलाकों में ही करें जहां पानी की निकासी हो सके। मक्का फसल की बिजाई मध्य जुलाई तक पूरी कर लें। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज ने बताया कि सामान्य मक्का की लंबी व मध्यम अवधि के सिफारिश शुदा एकल संकर किस्में और बायो फोर्टिफाइड मक्का की पूसा MH4, पूसा HQPS1 इम्प्रूव्ड, पूसा HQPS5 इम्प्रूव्ड, HQPS1, HQPS4 और HQPS5 संकर किस्मों का ही प्रयोग करना चाहिए। टेम्बोट्रियम लेडियम 42 SC 115 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से बिजाई के 20 से 25 दिन बाद 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बिजाई से पहले कर ले बीज उपचार। 1 एकड़ खेत के लिए 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। मक्का में फॉल आर्मीवर्म फ्रा सर्वाधिक हानिकारक कीट है। फ्रा की रोकथाम के लिए क्लोरोट्रोनरी पोल 19.8, थाइमेथो किस्म 19.8 अनुपात कीटनाशी द्वारा 6 मिलीमीटर प्रति किलोग्राम बीज के दर से शाम को बीज उपचार करें व सुबह बिजाई करें। इससे दीमक व तना छेदक की रोकथाम भी हो जाएगी। फसल की बीमारियों से बचाने के लिए थेरम 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज को बिजाई से 4 से 5 घंटे पहले उपचारित करें। बिजाई का तरीका, पूर्व पश्चिम दिशा में मेड बनाकर मेड के दक्षिण दिशा में उपचारित बीज से 4 से 6 सेंटीमीटर गहरी बिजाई करें। बाद में आधा खुड की ऊंचाई तक पानी लगाने से जमाव ज्यादा व जल्दी होता है। बिजाई यदि न्यूमेटिक प्लांटर द्वारा चौड़ा खुड विधि का उपयोग करके की जाए तो जमाव अधिक होता है व पानी को भी 30 से 35 अनुपात की बचत रहती है। खाद व उर्वरक। ज्यादा पैदावार लेने के लिए गोबर की खाद 60 क्विंटल प्रति एकड़ खेत की तैयारी से पहले डालें। सामान्य दिशाओं में 50 किलोग्राम DAP, 40 किलोग्राम MOP व 37 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग बिजाई के समय करें। खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए 600 ग्राम एस्ट्रोजन 50 WP के 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के 1-2 दिन बाद या खरपतवार अंकुरण से पहले छिड़काव करें। कीट नियंत्रण। फसल में फॉल आर्मी वर्म सबसे खतरनाक कीट होता है। इसका पता लगाने के लिए खेत में 5 फेरोमोन पिंजरा प्रति एकड़ के दर से बिजाई के बाद लगाएं। क्लोरोनेट्री प्रोनोल 18.5 SC 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ या सैन्योटोराम SC 100 मिलीलीटर का 200 लीटर पानी में गोल बनाकर छिड़काव करें।
1: घर पर पशुओं के लिए संतुलित दाना मिश्रण तैयार करें, बढ़ेगा दूध उत्पाद। मौसम के अनुसार आहार देने से स्वस्थ रहेंगे पशु। दुधारू पशुओं से अच्छा दूध और मुनाफा लेने के लिए उन्हें पौष्टिक और संतुलित आहार देना बेहद जरूरी है। आज उपलब्ध विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक संतुलित पशु आहार कंपाउंड फीड किसानों के लिए एक सुविधाजनक किंतु अपेक्षाकृत महंगा विकल्प है। डॉक्टर सुजोय खन्ना लुवास ने बताया कि पशुपालक आसानी से सस्ता और 100% शुद्ध संतुलित दाना मिश्रण तैयार कर सकते हैं। इससे न केवल खर्च में भारी कमी आएगी बल्कि पशुओं की सेहत सुधरेगी और दूध

0: में फैट और SNF की मात्रा भी शानदार तरीके से बढ़ेगी। सामग्री और सही अनुपात। अनाज 35 से 40 किलो, मक्का, जो गेहूं या बाजरा का इस्तेमाल किया जा सकता है। मौसम के अनुसार अनाज बदल सकते हैं, जैसे गर्मियों में जौ की तासीर ठंडी होती है और सर्दियों में बाजरा गर्माहट देता है। खल 25 से 30 किलो, प्रोटीन की पूर्ति के लिए सरसों की खल, बिनौला, कपास या मूंगफली की खल लें। चोकर और चूनी 20 से 25 किलो, गेहूं का चोकर और चना, उड़द या मूंग की दाल की चूनी छिलका पाचन तंत्र के लिए बेहतरीन होते हैं और फाइबर की कमी पूरी करते हैं। साधारण नमक 1 किलो, यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और पशु की भूख बढ़ाता है। तैयार करने की सही विधि। अनाज को बिल्कुल बारीक आटे की तरह पीसने के बजाय दलिया पिसवाएं। खिलाने की मात्रा और सावधानियां। एक स्वस्थ पशु को उसके शरीर के रखरखाव के लिए रोजाना 1.5 से 2 किलो दाना चाहिए। अमरूद का साइलेंट किलर है फल मक्खी। बचाव के लिए फेरोमोन ट्रैप है फायदेमंद। बारिश सीजन में फल के छिलके में अंडे देकर फसल खराब करती है मक्खी। अमरूद के बरसाती फल को फल मक्खी प्रभावित कर सकती है। कीटनाशक मुक्त उत्पादन के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग फायदेमंद हो सकता है। हाल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गुआवा अमरूद भूना में किसानों को जागरूक करने के लिए फल मक्खी ट्रैपों में नए लीवर लगाए गए। प्रदेश में 17,448 हेक्टेयर में अमरूद की फसल है। पिछले साल 21,228 मेट्रिक टन उत्पाद हुआ था। प्रदेश में अमरूद की खेती हिसार, फतेहबाद, सिरसा, भिवानी, जींद, करनाल, सोनीपत, पानीपत व यमुनानगर में की जाती है। जुलाई से अक्टूबर तक फल मक्खी का प्रभाव रहता है। कृषि विज्ञान केंद्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश बेरवाल ने बताया कि फल मक्खी अमरूद, आम, पपीता, नींबू की फसलों का प्रमुख कीट है। मादा मक्खी फल के छिलके में अंडे देती है। अंडों से निकले कीड़े फल के अंदर गूदा खा जाते हैं। इससे फल सड़ने लगते हैं, गिर जाते हैं व बाजार में गुणवत्ता घट जाती है। इससे 30-80% तक उत्पादन प्रभावित हो सकता है। सामान्य प्लास्टिक ट्रैप 80 से 200 रुपए तक उपलब्ध। सामान्य प्लास्टिक ट्रैप 80 से 200 रुपए तक उपलब्ध हैं। लूअर की कीमत 35 से 100 रुपए प्रति पीस या ब्रांड के अनुसार अलग अलग हो सकती है। कृषि विश्वविद्यालय हिसार से भी यह किफायती दाम पर उपलब्ध हो जाते हैं। 1 एकड़ में नियंत्रण के लिए 8 से 10 ट्रैप लगाने की सलाह दी जाती है। व्यवसायिक ट्रैप लूअर किट की कीमत इससे अधिक भी हो सकती है। किसानों को उत्पादन में मिलेगा बढ़ावा। फल मक्खी की समय रखते पहचान हो जाती है। कीट की संख्या बढ़ने से पहले नियंत्रण संभव होता है। फलों का नुकसान और गिरावट कम होती है। कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत घटती है। उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है। बेहतर गुणवत्ता वाले फल तैयार करने में मदद मिलती है।
1: ये थे आज के कृषि समाचार और उम्मीद करते हैं कि इन कृषि समाचारों से आपका लाभ होता होगा। अगर आपके पास भी कोई कृषि जानकारी है, आप कृपया हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। हम उस जानकारी को सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले कृषि समाचार में।
0: मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।
1: नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। समय समय पर हम आपके साथ अलग अलग योजनाओं के बारे में बात करते हैं जो भारत सरकार की ओर से हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए होती है। आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रूपए देती है सरकार। किसानों की आय बढ़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रूपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से दिए जा रहे हैं। राशि 4-4 महीनों के अंतराल में 2,000 रूपए की 3 किस्तों में दी जाती है। ये दस्तावेज जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी है। किसान का नाम, आयु, लिंग, श्रेणी, SC ST, आधार कार्ड, जमीन की फर्द, पहचान पत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड या केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार या उनके अधिकारियों आदि द्वारा जारी किए गए किसी भी पहचान दस्तावेज आदि, बैंक खाता संख्या और लाभार्थी का मोबाइल नंबर। ऐसे ले सकते हैं लाभ। योजना का लाभ लेने के लिए किसान pmkisan.gov.in यानी pmkisan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर योजना का लाभ खाते में प्राप्त होता है। किसान यह आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSS से भी करा सकते हैं। पात्र किसान पटवारी, राजस्व अधिकारी या अन्य नामित अधिकारी एजेंसी के पास जरूरी विवरण प्रस्तुत कर आवेदन कर सकते हैं। ये व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं है। इस योजना में कुछ लोग शामिल नहीं हो सकते। इनमें संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति, पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, नगरपालिका चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन, केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी और मासिक 10,000 रूपए से अधिक पेंशन लेने वाले ग्रुप डी के कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA और आर्किटेक्ट भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं। इनके पास खेती की जमीन है तो भी सम्मान निधि का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। आयकर दायरे में आने वाले किसान भी योजना से बाहर रखे गए हैं। ये थी संक्षिप्त जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। समय समय पर हम आपको अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के माध्यम से। अब मुझे दीजिए इजाजत, कोई और जानकारी लेके आपसे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: ዶይቼ ቦዛን ነመት አሻሪያ ሲፈር ሬዲዮ ሚተስታ ሀም ሰፈር ዘንደጊ ሁንድ
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए नितिन मुकेश और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज से रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार, तुम छू बोजान रेडियो वितस्ता हमसफर जिंदगी हूं। रेडियो वितस्ता छु पन्ने माजी जेव पोछर दिन खतर वक्त वक्त तुंद खतर नई प्रोग्राम तो नव जानकारी हेत हमेश इवान। बुस तुहद रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज छुस बु तुंद खतर कशर ब्रॉडकास्ट सेगमेंट्स मंज अख नव डल हेत आमुत। आज बोजनो तुम अशुर अफसान इस जन लिखमुत सानिर हंद मायानाज लेखक श्री वीरेंद्र पटवारी साबन। अत अफसानस नाव पोज अपुज। वलि बोजो ये अफसान पोज अपुज। अख लकुट अफसान अमिक लेखन वल वीरेंद्र पटवारी।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

हमने सर पे

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ, मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डर जाता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, मैं खुद से लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। धन्यवाद।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहे और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गांवों वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचा।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: और मत छोड़ो, हर घर तक हर गांव तक आए।
1: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: सामने वो देख रहे एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो बात बड़ी सिंपल।
0: देखो बेल बॉटम, गालों पे डिंपल, हल्का सा गालो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: हम थे वो थी हम थे।

Yeah! Yeah!

ढक ढक ढक धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह, हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो

मशहूर सिने और नाटक अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे पुत्र शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर सन 1931 को मुंबई में हुआ था। 8 साल की उम्र से ही वो पापा के साथ नाटकों में काम करने लगे थे। शम्मी 5वीं में थी तो अक्सर नाटक प्रस्तुत करने के लिए पापा के साथ दूसरे शहरों में जाया करते थे। इससे वो कभी ठीक से स्कूल नहीं जा पाए। उनके स्कूल न जाने की वजह से हेडमास्टर ने शम्मी का नाम काट दिया। जब इस बात की जानकारी पृथ्वीराज कपूर को हुई तो उन्होंने शम्मी का नाम दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। साथ ही शम्मी को मुंबई से बाहर ले जाने का सिलसिला भी बंद कर दिया। पृथ्वीराज चाहते थे कि शम्मी की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। मैट्रिक की परीक्षा के बाद पापा ने पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है।

तो शमी का जवाब था कि अब आगे पढ़ने के बजाय बड़े भैया राज कपूर की तरह वो भी फिल्मों में उतरेंगे। इस पर पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम हमें हीरो बनकर दिखाओ। तुम्हारे इस काम में ना मैं मदद करूंगा और ना राज कपूर। तुम्हें अपने बूते पर फिल्मों में काम पाकर दिखा।

हिम्मत नहीं हारी बल्कि पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ फिल्मों में काम तलाशना शुरू कर दिया। वो हर दिन फिल्म निर्माताओं के घर चक्कर लगाने लगे। मगर कोई शम्मी को अपनी फिल्म में काम देने को राजी नहीं हुआ, लेकिन

एक रोज वो निर्माता निर्देशक महेश कौल से मिले तो उन्होंने शम्मी को अपनी फिल्म जीवन ज्योति में बतौर हीरो का रोल देने का फैसला किया। फिल्म की हीरोइन चांद आसमानी भी पहली बार इस फिल्म में काम कर रही थी। जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आई तो शम्मी कपूर रातों रात हीरो बनकर दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए।

जीवन ज्योति के बाद निर्माता केदार शर्मा ने अपनी फिल्म रंगीन रातें में शम्मी को हीरो का रोल दिया, जिसमें माला सिन्हा हीरोइन थी। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली भी केदार शर्मा की फिल्मों में काम कर रही थी। इस बीच गीता बाली और शम्मी कपूर में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार परवान चढ़ने लगा।

फिल्म कॉफी हाउस मिस कोको कोला में गीता बाली शम्मी कपूर ने साथ काम किया और ये जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। शम्मी कपूर ने गीता बाली को लेकर अपनी मम्मी से चर्चा की तो मम्मी ने ये बात पृथ्वीराज यानी शम्मी के पापा को बता दी। जब पृथ्वीराज को शम्मी की अपनी मर्जी से शादी करने की बात पता चली तो उन्होंने शम्मी को बुलाकर खूब डांट पिलाते हुए कहा कि कोई हीरोइन कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती, लेकिन बड़े भाई राज कपूर और भाभी कृष्णा ने पापा से सिफारिश की, किसी तरह इस शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन शादी से पहले एक शर्त रखी कि शादी के बाद हमारी बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी। गीता ने उनकी ये बात खुशी खुशी मान ली।

फिल्मों में अपनी दिलकश अदा के जरिए दर्शकों के दिलों पर कई दशक तक राज किया। उनके फिल्मी गाने और डायलॉग आज भी मशहूर हैं। उन्होंने फिल्मों में कई तरह के रोल अदा किए, लेकिन उनके रोमांटिक रोल आज भी फिल्मों में जीवंत लगते हैं। सन 1966 में बनी फिल्म तीसरी मंजिल उनकी कामयाब फिल्म रही। उनके अपोजिट थे आशा पारेख।

0: अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, खो गया दिल मेरा सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु।
1: रफी की आवाज उन पर सटीक बैठती थी, अदाकारी की उनकी बिंदास शैली हमेशा के लिए मशहूर हो गई। जैसे याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे वाले उनके स्टाइल को भला कौन नहीं जानता। रफी के गीतों ने शम्मी को सितार बनाया तो शंकर जयकिशन के संगीत ने उनमें चाशनी पिरोई।
2: हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को जी कहता रहे।

गीता बाली का सन 1966 में निधन होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी सन 1969 में नीला देवी से की। आज शम्मी कपूर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बिंदास अदाकारी हमारे दिलो दिमाग पर अभी भी जीव

एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी।

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: ईश्वर अल्लाह तेरे नाम पे

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: आज है एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

कभी एक ख्वाब, कभी एक हकीकत, कभी एक मुलाकात, कभी एक इंतजार, कभी आंखों की नमी, कभी होंठों की हंसी, और कभी एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दिल लिखता है और सिर्फ दिल समझता है। आज के पहलू और गीत में चलिए मोहब्बत के हर रंग को महसूस करते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। मोहब्बत जब पहली बार दिल पर दस्तक देता है तो सब कुछ नया लगने लगता है। एक मुस्कुराहट महकी सी लगती है, एक आवाज भी गीत लगती है, और एक चेहरा, सिर्फ एक चेहरा दुनिया से अलग लगता है।

मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले, दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम।

मोहब्बत सिर्फ कहने की चीज नहीं होती, कभी वो आंखों की बोली होती है, कभी एक छुपा हुआ राज, कभी एक लफ्ज जो होठों तक आके रुक जाता है।

0: की हंसी शहजादी, होंठ क्यों कांप रहे हैं जरा कुछ तो बोलो।
1: तुमने पुकारा और हम चले आए जा।

मोहब्बत सिर्फ पास होने का नाम नहीं, कभी दूर रहकर भी दिल एक साथ धड़कते हैं। एक आवाज जो सिर्फ हवाओं में गूंजती है, एक साया जो पलकों पर बारिश की बूंदें जैसे ठहर जाता है।

मोहब्बत की कहानियों में सिर्फ मिलने वाले ही नहीं होते, कुछ लोग जुदा होकर भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। कोई एक छोटी सी याद, एक कहानी जो अधूरी रह गई, कभी कभी जुदाई भी मोहब्बत की एक शक्ल होती है।

पहली बार जब दिल धड़कता है, एक अजनबी भी अपना लगने लगता है। कहीं आवाजें मधुर लगती है, कहीं हवा भी गीत गाने लगती है। पहला प्यार एक नई कहानी की शुरुआत है।

मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, कभी कभी दूरियों में भी मोहब्बत जीती है। जुदाई का दुख आंखों से बहने वाले उन आंसुओं का है जो कभी किसी को नजर नहीं आते पर दिलों को हमेशा भिगोए रखता है।

मोहब्बत एक रोशनी है जो हर दिल को रोशन करती है। कभी एक मुस्कुराहट में छुप जाती है, कभी आंखों की नमी में बहती है, कभी एक लम्हा जीने का सबब बन जाता है और कभी उम्र भर का इंतजार बन के दिल में बसी रहती है।

आज की ये महफिल यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए पहलू के साथ, एक नए गीत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, और मोहब्बत में जीते रहो।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 15, शीर्षक था मोहब्बत। एडिट रिकॉर्ड किया भारत सपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान व निया जैन का, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विविधता की प्रस्तुति।

मन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

चलते चलते तुम्हारी दुआओं का असर देखेंगे और सरी रहा अपने इंतजार को महफूज रखेंगे अपने महबूब के लिए, उस महबूब के लिए जो हरदम मेरे साथ मेरे पास रहता है मेरे साए की तरह। तुम्हारे कुछ ख्वाबों ने एक मुद्दत के बाद दिल में क्यों आज आस जगाई है कि तुम्हारी सांसें तुम्हारी धड़कनें मेरे आने वाले कल का नसीब हैं। हमारे हाथ भी उठते हैं अब तुम्हारी दुआओं में जब मेरे कारवां में तुम्हारा साया मेरे साए के हमराह इस रेतीले सफर में मील के पत्थर की तरह रह गुजर में शामिल तो होता है पर रूबरू नहीं होता।

उदासी भरे इन पीले पत्तों के मौसम में सिर्फ तुम्हारी यादें साए की तरह मेरे साथ साथ ही मेरे पास पास ही। परछाइयों के इस सफर में हमारे रास्ते पथरीले हैं, पर तुम्हारे हैं उम्मीदों से भरे। तुम्हारे लिए फिर सुबह होगी और हमारे नसीब में हैं हिजर की ढलती शामी। इन रेतीली हवाओं का रुख क्यों नहीं कोई मोड़ लेता है? क्यों नहीं कोई मुझे अपने दामन में पनाह देता है? मेरी चाहतों को हमेशा ये कौन दर्द का लिबास पहनाता है? क्यों कोई मुझे राह रुस्वा छोड़कर यूं ही चला जाता है ये कहकर कि मैं लौट कर तुम्हारे ही पास आऊंगी जीने के लिए? ये मेरा ही कसूर था जो उदासी भरे इन पीले पत्तों के मौसम में मैंने तुम्हें चाहा है अपनी चाहतों की तरह। तुम्हारे आसमां में अपनी परवाज लिए बुलंदियों को छूने की आरजू की, तुम्हारे हाथों की लकीरों में

कुछ तो है जो बेवजह तुम मेरी जिंदगी में आकर मेरे मासूम ख्यालों को तन्हा कर जाते हो, और मैं तुम्हें सोचता रहता हूं देर तक कि तुम मुझे अपने आंचल में जो छिपाते, तो शायद मैं खुदा से जीने की आरजू करता, गुजारिश करता, मेरे एहसास को तुम संभालते, मेरी धड़कनों में मेरे साथ शामिल हो जाते, मेरे अधूरे सफर में मेरे हम सफर बन जाते, मेरी वीरानियों को तुम आबाद करते, मेरी राहों को तुम मुनव्वर करते, अपने सितम अपनी परेशानी मुझे दे देते, मगर ये हो न सका क्योंकि तुम्हें जाना था दूर किसी और की दुनिया में, जहां शायद उजाले तुम्हारी राहों को रोशन करने के लिए मुंतजर हैं, जहां पिंजरों में कैद परिंदे तुम्हारे आने का इंतजार करते हैं अपनी आजादी के लिए, जहां ये बेजुबान पत्थर कुछ बोलने की फिराक में है, जहां ये अपनी खामोशी तोड़ने के लिए तरस रहे हैं, बेचैन हैं, मगर अब मुझे खुद को संभालने के लिए किसके हाथ उठेंगे मेरी दुआओं

दोस्तों, फिल्मी गीतों का ये सफर आप तय कर रहे हैं अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। ये सफर जारी है। जब रिश्ते टूट गए तो फिर कल्पना क्यों करें, क्यों तुम्हारे बारे में सोचे। क्यों तुम्हारे दिए हुए तोहफे संभाल कर रखें, फिर क्यों न हम तुम्हारे लिखे हुए खत जलाएं, तुम्हारी दी हुई निशानियां इन पानियों में बहा दें, तुम्हारे घर तक जा रहे इन रास्तों को भूल जाने की कोशिश करें। जब ये रिश्ते टूट गए तो फिर हम क्यों उजालों का इंतजार करें। क्यों न गुप अंधेरों में गुम हो जाए, तन्हा चले चले बचपन के आगोश में, मिट्टी के खिलौनों से टूटी दीवारों को सजाएं, रंग बदलती दुनिया की तस्वीरों को आखिरी बार। आखिरी बार अपने कैनवास पर उतारने की कोशिश करें। शायद इस बार मैं एक पायदार तस्वीर बनाने में सफल हो जाऊं।

यही वो जगह है जहां हम मिले थे कभी। सब कुछ अपनी जगह बरकरार है, कायम है। हाँ, ये चिनार तब बहुत छोटा था, पर अब इसकी शाखाएं आसमां से बातें करने लगी हैं। इसकी नरम नाजुक परछाई में बिछे मखमली घास पर करवटें लेने को दिल कर रहा है, क्योंकि ये जगह आज भी वैसी ही है जैसे पहले कभी हुआ करती थी, जहां सुनहरी शामों से पहले आफताब का मंजर हमारी सांसों को ताजगी बख्शता रहा। ये हवाएं हमारी रूहों को अमन सुकून से नवाजती रहीं। ये पानी अमृत से कम नहीं। यहां इन परिंदों की मीठी मीठी बोली सरगम की तान छेड़ती थी, और हर कोई अपनी आवाज इनकी बोली से मिलाया करता था, ताकि यहां का माहौल संगीतमय हो। बदला अगर है कुछ तो वो है सिर्फ हमारा अतीत, हमारा बचपन, जो शायद कभी भी लौट कर नहीं आ सकता।

लिए बस इतना ही। ये सफर आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और हम आपके लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक प्रसारण करते हैं आप सभी के लिए। और हमारे प्रसारण सिर्फ वो होते हैं जो रखते हैं आपसे सरोकार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सोहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम आज के पसंद आए होंगे, और आप अपना फीडबैक भी हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर, जो हम हर दिन आपको नोट कराते हैं और आज भी नोट कराएंगे कुछ बातचीत करने के बाद। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे। मैं आज आप सभी से कुछ दिनों के बाद रूबरू हूं, और उम्मीद करता हूं कि जब भी मैं स्टूडियो में नहीं होता हूं तो कुछ आपके लिए कुछ जानकारी इकट्ठा करके ले आता हूं। हम सबकी कोशिश है कि समय के साथ हम बदलें और समय के साथ हम अपनी जिंदगी को और सही और सुदृढ़ बना सकें। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 38 सेकंड। श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी। एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो वितस्ता के प्रसारण सेवा का समापन समय है। दिन भर के सुरमई संगीत, ज्ञानवर्धक जानकारियों और अपनों के साथ की इस खूबसूरत यात्रा को अब यही विराम देने की घड़ी आ पहुंची है। रेडियो वितस्ता हमेशा आपके जीवन में ज्ञान, संस्कृति और सकारात्मकता की अविरल धारा बहाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है और आगे रहेगा भी। ठीक इसी तरह जैसे हमारी पावन वितस्ता नदी हर मोड पर जीवन का नया रंग बिखेरती है। जी हां दोस्तों, आज हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे। जैसे ही मैं कुछ दिन आपके साथ यहां पर नहीं जुड़ा था, तो तकनीक, सामाजिक बदलाव और आत्मीयता की अनूठा संगम, एआई एंड स्टोरी टेलिंग फॉर सोशल चेंज। 18 और 19 अगस्त को जियो इंस्टीट्यूट के प्रांगण में एक ऐतिहासिक और अत्यंत विचारों जनक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो रिलायंस फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन और गर्ल इफेक्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इसी 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय था, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्टोरी टेलिंग फॉर सोशल चेंज, जो नवी मुंबई में संपन्न हुआ। देश भर के जाने माने 25 दिग्गज कम्युनिकेटर्स के बीच रेडियो वितस्ता को भी इस वैश्विक और आधुनिक मंच का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसा मौका था जहां पर हमने आने वाले दिनों में क्या बदलाव होने जरूरी है तकनीकी तौर पर, क्योंकि हमें भी तकनीकी तौर पर बदलावों के साथ रहना चाहिए और रहना जरूरी भी है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह समझना था कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दैनिक जिंदगी, संचार के तरीकों और सामाजिक बदलाव की गति को प्रभावित कर रही है। 2 दिनों के गहन मंथन और चर्चाओं से जो सबसे महत्वपूर्ण सीख सामने आई वो ये है कि एआई

ये दृष्टिकोण वरुण और करुणा और भावनाएं हमेशा सर्वोपरि रहेंगी। इसी खूबसूरत अनुभव, नई सीख और आत्मीयता संबंधों को पिरोते हुए कुछ विशेष पंक्तियां आप सभी के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जियो इंस्टीट्यूट की उस सुनहरी शाम में कहानियों का हुनर सीखा एआई के नाम में जियो इंस्टीट्यूट की उस सुनहरी शाम में कहानियों का हुनर सीखा एआई के नाम में 25 सूरज के एक साथ जब आसमां में चमके, 25 सूरज एक साथ जब आसमां में चमके, हर आवाज में एक नया जहां जलके। तकनीक ने कहा मैं हूं बस एक जरिया, तकनीक ने कहा मैं हूं बस एक जरिया, मनुष्य की सोच से ही रोशन है ये दुनिया। एआई चलाइए हमें ये मंजूर नहीं, हम ही चलाएंगे इससे यही हमारी जिद नहीं, जिद से सही। इस सफर में मिली एक अनमोल दोस्त, दोस्ती की सूरत में दिल के करीब बनी वो निधि, नाम से भी और काम से भी सचमुच की निधि, याद रहेगी हमेशा ये मुलाकात, ये संगत, ये निधि। रेडियो वितस्ता को मिला ये सौभाग्य महान, कहानी और तकनीक का हुआ यूं मिलन, ज्ञान की इस यात्रा में जो साथी मिले अनमोल, उनकी याद रहेगी दिल में हमेशा अनमोल। ज्ञान और विचारों के इस आदान प्रदान के साथ साथ ये मंच नए रिश्तों और आत्मीयता का भी केंद्र बना। देश के कोने कोने से आए दूरदर्शी से मिलने का मौका मिला और कई ऐसे दोस्त बने जो बहुत ही कम समय में दिल के बेहद करीब हो गए। सीखने, समझने और साझा करने और हंसते मुस्कुराने कि ये पल ता उम्र याद रहने वाले हैं। तो ये था आज का विषय। इस विषय पर हम आने वाले दिनों में भी एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करेंगे जो आप सुनेंगे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। तो आज जाने से पहले आपको हर दिन की तरह कुछ पंक्तियां आप सभी के लिए, दिन भर के इस सुहाने सफर को समेटते हुए आइए अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। रेडियो वितस्ता के इस सफर की मिठास आपके दिलों में बनी रहे इसी उम्मीद के साथ ये पंक्तियां आप सभी के नाम। वितस्ता की बहती पावन धार की तरह गुंजित रहे हर दिल में गीतों का यह संसार, फिर मिलेंगे कल एक नई भोर की किरण के साथ, तब तक संजोकर रखिए रेडियो वितस्ता का प्यार। जी हाँ दोस्तों, जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं जल्दी से। कल 23 अगस्त 2026 रविवार को जो कार्यक्रम आपके लिए हम लाए हैं वो इस प्रकार है। संगीत की सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर वंदे मातरम और प्रकाश प्रवाह से, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं पंचांग के साथ। 6 बजे सुनेंगे आप भक्ति संगीत, कल रविवार है, कल आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर आपको लेके चलेंगे गांव रजापुर में और वहां के लोगों से आपकी कराएंगे बातचीत। 8:30 किन्हीं के साथ रेडियो पॉडकास्ट का एपिसोड 6, रिश्ते कमजोर कर सकता है मजाक उड़ाना, ये होगा शीर्षक। और 9:30 कार्यक्रम दोस्ती अनमोल पेश करेंगे भारत सोपोरी, एपिसोड होगा 2। और 10:00 होगा नारी एक दर्पण, एपिसोड 4, हमारे साथ होंगी स्नेहलता। और 2:00 आप सुनेंगे कृषि समाचार, 6:00 भक्ति संगीत और 6:30 शाम में गजल, और 7:00 होगा कार्यक्रम सरगम, एपिसोड 2 पेश करेंगे आरजे किरणी। और हर दिन की तरह 8:30 कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा, कल की कड़ी है तन्हा तन्हा। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का, आप जरूर अपना फीडबैक हमें भेजिएगा हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। आप सभी का जीवन खुशियों, उत्तम स्वास्थ्य और असीम शांति से भरा रहे।
मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय।